0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़। जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका अपना आरजे कार्ग और शुरू हो चुका है आपका पसंदीदा शो हेलो ईटानगर। यहां हम बात करते हैं ट्रेन हिस्ट्री सेगमेंट और कौन सा इम्पोर्टेंट डे आज के दिन मनाए जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं टुडे इन हिस्ट्री सेगमेंट से। वर्ष 1974 पोखरण परमाणु परीक्षण। 18 मई 1974 को भारत ने राजस्थान के पोखरण टेस्ट रेंज में अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया। इस ऑपरेशन का नाम था स्माइलिंग बुद्धा। इसके साथ भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जिनके पास परमाणु क्षमता थी। ये भारत की वैज्ञानिक और सामरिक शक्ति का एक बड़ा प्रतीक माना जाता है। 2008 में इसी समय इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL ने भारत में क्रिकेट मनोरंजन का नया दौर शुरू किया। वर्ष 1804 नेपोलियन बोनापार्ट बने फ्रांस के सम्राट। नेपोलियन बोनापार्ट को 18 मई 1804 को फ्रांस का सम्राट घोषित किया गया। उन्होंने यूरोप के इतिहास को गहराई से प्रभावित किया। वर्ष 1897 ड्रैकुला उपन्यास प्रकाशित। लेखक ब्रैम स्टोकर का प्रसिद्ध उपन्यास ड्रैकुला पहली बार प्रकाशित हुआ। यह दुनिया की सबसे मशहूर हॉरर नॉवेल्स में से एक मानी जाती है। 1980 माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी विस्फोट। अमेरिका में माउंट सेंट हेलेंस ज्वालामुखी में भयानक विस्फोट हुआ। यह 20वीं सदी की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदाओं में से एक था। 1990 हबल स्पेस टेलीस्कोप की उपलब्धि। नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने अंतरिक्ष के अद्भुत तस्वीरें भेजनी शुरू की जिससे ब्रह्मांड के को समझने में बड़ी मदद मिली। तो दोस्तों, 18 मई का दिन भारत की वैज्ञानिक ताकत, विश्व इतिहास की बड़ी घटनाओं और साहित्य से लेकर अंतरिक्ष तक की उपलब्धियों का गवाह रहा है। इतिहास हमें बताता है हिम्मत, ज्ञान और मेहनत से देश और दुनिया बदल सकती है। और अब इसी प्रेरणादायक सोच के साथ चलिए बढ़ते हैं एक सूथिंग म्यूजिकल ब्रेक की ओर और सुनते हैं उदित नारायण के आवाज में फिल्म और प्यार हो गया से ये बेहद खूबसूरत गीत।

0: दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जहां होती है दिल से दिल की बात, हम लौटेंगे कार्यक्रम हेलो ईटानगर के अगले भाग में। फिलहाल लेते हैं एक छोटी सी अंतराल।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: दोस्तों, अब बात करते हैं कि आज यानी 18 मई को कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए जाते हैं। यह दिन खास तौर पर संस्कृति, स्वास्थ्य और जागरूकता से जुड़ा हुआ है। आज है इंटरनेशनल म्यूजियम डे यानी अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। हर साल 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई? इस दिन की शुरुआत वर्ष 1977 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम ICOM द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य है लोगों को संग्रहालयों के महत्व के बारे में जागरूक करना, इतिहास, संस्कृति और विरासत को संरक्षित करना, नई पीढ़ी को अतीत से जोड़ना। संग्रहालय क्यों महत्वपूर्ण है? संग्रहालयों हमें बताते हैं हमारे इतिहास की कहानी, पुरानी सभ्यताओं और संस्कृतियों की झलक, कला, विज्ञान और विरासत की पहचान। भारत में भी नेशनल म्यूजियम जैसे कई प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जहां हमारी समृद्ध संस्कृति और इतिहास सुरक्षित हैं। आज है वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे। वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे भी आज के दिन यानी 18 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य है HIV एड्स के खिलाफ वैक्सीन रिसर्च को बढ़ावा देना, लोगों में जागरूकता फैलाना, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों को सम्मान देना। ये दिन हमें स्वास्थ्य और विज्ञान के महत्व की याद दिलाता है। तो दोस्तों, 18 मई हमें एक तरफ अपने इतिहास और संस्कृति से जोड़ता है तो दूसरी तरफ बेहतर स्वास्थ्य और वैज्ञानिक प्रकृति की ओर भी प्रेरित करता है। यानी अतीत की विरासत और भविष्य की उम्मीद दोनों का खास खूबसूरत संगम है आज का दिन। तो दोस्तों, हेलो ईटानगर कार्यक्रम के अंत में लीजिए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत गीत। आवाज दी है कुमार शानू और अलका याग्निक ने, फिल्म अलबेला से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोतेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोतेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोतेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोतेनबर्ग में स्वीडन की चुनिंदा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ हुई बातचीत में स्वीडिश कंपनियों से भारत में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने का आग्रह किया। श्री मोदी ने स्वीडन की नवाचार और स्थिरता की क्षमताओं को भारत के विशाल प्रतिभा और विकास की गति के साथ जोड़ने का आह्वान किया।

0: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिम मामलों के सचिव सीबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शामिल होंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात के बराकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है। भारत ने संयम बरतने और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से तनाव समाप्त करने का आह्वान किया है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। नीट यूजी प्रवेश परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में महाराष्ट्र के एक अभिभावक पर प्रश्न पत्र को 5 लाख रुपए में खरीदने का आरोप है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो की एक टीम ने कल इस व्यक्ति से पूछताछ कर आगे की जांच के लिए एजेंसी के पुणे कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने पुणे की आरोपी मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया था। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये बड़ी उपलब्धि है। वर्ष 1982 में हुई नई दिल्ली में हुई एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप के बाद भारत ने दूसरी बार इसकी मेजबानी की थी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Nina Arakel. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Mr. Modi arrived in Gothenburg yesterday on a 2-day visit to Sweden. Mr. Modi was

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

हर्ट्स पर मैं हूं आपका अपना आरजे कारगर, लेकर हाजिर हूं आपके फेवरेट एंटरटेनमेंट शो फिल्मी गपशप में। दोस्तों, अगर आपकी धड़कनें बढ़ जाती हैं नई फिल्मों के ट्रेलर देखकर, बॉलीवुड गॉसिप सुनकर, ओटीटी वेब सीरीज बिंज वॉच करके या ट्रेंडिंग रील्स और सॉन्ग्स पर ग्रुप करके, तो समझ लीजिए ये शो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं आज के बॉलीवुड के ताजा तरीन अपडेट्स पर एक नजर। दीपिका पादुकोण की कमबैक फिल्म पर पड़ा बज। दोस्तों, दीपिका पादुकोण की अगली बिग बजट फिल्म को लेकर इंडस्ट्री में काफी एक्साइटमेंट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म होगी। इसमें दीपिका पहले से ज्यादा पावरफुल अवतार में नजर आएगी। शाहरुख खान की किंग फिर हेडलाइंस में। दोस्तों, SRK की अपकमिंग फिल्म किंग का प्री प्रोडक्शन तेजी से चल रहा है। फिल्म में बड़े इंटरनेशनल एक्शन सीक्वेंसेस होंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई फॉरेन स्टंट एक्सपर्ट्स प्रोजेक्ट से जुड़ रहे हैं। किंग खान जब कमबैक मोड में होते हैं तो बॉक्स ऑफिस खुद सैल्यूट करता है। कियारा आडवाणी और सिद्धार्थ मल्होत्रा की नई केमिस्ट्री चर्चा में। दोस्तों, ये पावर कपल फिर से ट्रेंड में है। खबरें हैं कि दोनों जल्द एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म में साथ दिख सकते हैं। फैंस सोशल मीडिया पर ऑलरेडी एक्साइटेड हैं। रियल लाइफ रोमांस अब फिर से रियल लाइफ मैजिक बनने वाला है।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप और हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ ताजातरीन अपडेट्स पर एक नजर। कार्तिक आर्यन की नई लुक ट्रांसफॉर्मेशन वायरल। कार्तिक आर्यन का नया रग्ड लुक इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है। माना जा रहा है कि ये उनके अपकमिंग एक्शन थ्रिलर के लिए है। राम गोपाल वर्मा वर्सेस धुरंधर 2 कंट्रोवर्सी। दोस्तों, इस समय सबसे बड़ी चर्चा धुरंधर 2 को लेकर हो रही है। डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने ओपनली फिल्म के कुछ सीन्स पर सवाल उठाए हैं, खासकर अंडरवर्ल्ड कैरेक्टर फोर्ट्रेल को लेकर डिबेट शुरू हो गई है। क्या हो रहा है? कुछ लोग फिल्म को स्टाइलाइज्ड एंटरटेनमेंट कह रहे हैं, वही कुछ क्रिटिक्स का कहना है कि क्राइम कैरेक्टर्स को टू ग्लैमरस दिखाया गया है। सोशल मीडिया पर फैंस दो हिस्सों में बट गए हैं। आलिया भट्ट के कांस लुक पर बड़ा विवाद। दोस्तों, कांस फिल्म फेस्टिवल 2024 में आलिया भट्ट का रेड कार्पेट अपियरेंस काफी चर्चा में है। एक तरफ फैंस उनके क्लासिक फैशन लुक की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग भी शुरू हो गई है। कॉलमनिस्ट शोभा दे ने भी उनके गॉन और रेड कार्पेट अपियरेंस को लेकर क्रिटिसिज्म किया है। इस कंट्रोवर्सी के बीच आलिया मुंबई लौट चुकी हैं और रणबीर कपूर लगातार उनके साथ सपोर्ट में नजर आए। उर्वशी रोटेला का कांस लुक वायरल और ट्रोल भी। दोस्तों, उर्वशी रोटेला फिर हेडलाइंस में है। कांस 2026 में उनका आइवरी सारी लुक वायरल हो गया, लेकिन कई लोगों ने कहा कि उनका आउटफिट इंटरनेशनल मॉडल गिगी हैडिड के लुक से मिलता जुलता था। सोशल मीडिया पर मीम्स और ट्रोलिंग शुरू हो गई है। आयुष्मान खुराना का इमोशनल कन्फेशन वायरल। दोस्तों, वेटरन एक्टर शेखर सुमन ने, माफ कीजिए, आयुष्मान खुराना का एक इंटरव्यू अभी काफी ट्रेंड कर रहा है। उन्होंने कहा कि अपने शुरुआती दिनों में वे रिलेशनशिप में रेड फ्लैग थे। उन्होंने अपनी पत्नी ताहिरा काश्यप के साथ ब्रेकअप फेज को भी याद किया। सक्सेस के पीछे कई पर्सनल स्ट्रगल्स भी छिपे होते हैं। दोस्तों, फिलहाल सुनते हैं एक प्यारा सा गीत शान और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में, फिल्म कोई मिल गया से।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Pay Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series, 1.0 litre dual jet, dual VVT engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। शेखर सुमन ने आज के स्टैंड अप कॉमेडी सीन पर उठाए सवाल। दोस्तों वेटरन एक्टर शेखर सुमन ने मॉडर्न स्टैंड अप कॉमेडी को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि आजकल कई कॉमेडियंस अब्यूजिव लैंग्वेज को कूल समझते हैं। उन्होंने क्लीन कॉमेडी की जरूरत पर जोर दिया। कॉमेडी में लाफ्टर होना चाहिए, कंट्रोवर्सी नहीं, यही शेखर सुमन का कहना है। इमरान हाशमी ने सुनाया शॉकिंग फैन मोमेंट। दोस्तों फिल्म जन्नत के 18 साल पूरे होने पर इमरान हाशमी ने एक पुराना इंसिडेंट शेयर किया। उन्होंने बताया कि फिल्म की सक्सेस के बाद कोलकाता में क्राउड इतना क्रेजी हो गया था कि उन्हें सेफ्टी के लिए बाथरूम में छिपना पड़ा था। रामचरण की फैडी का ट्रेलर लॉन्च आज। दोस्तों साउथ सुपरस्टार रामचरण की अपकमिंग फिल्म फैडी का ट्रेलर आज मुंबई में लॉन्च होने वाला है। फिल्म को फैन इंडिया लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। अगले महीने इसकी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। साउथ सिनेमा का क्रेज अब पूरे इंडिया पर रूल कर रहा है। सलमान खान का फिटनेस लुक्स फिर वायरल। दोस्तों सलमान खान ने हाल ही में अपनी शर्टलेस फोटो शेयर की जो तुरंत वायरल हो गई। फैंस खासकर उनकी फिटनेस की तारीफ कर रहे हैं। 7 की उम्र में भी उनका स्वेट ट्रेंड कर रहा है। भाईजान का स्टाइल और फिटनेस एज को भी पीछे छोड़ देता है। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत फिल्म कल होना हो से। आवाज दी है साधना सरगम, मधुश्री और उदित नारायण ने।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी गपशप आकाशवाणी ईटानगर के एन एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, पिछले वीकेंड से थिएटर्स में कई नई फिल्में रिलीज हुई, लेकिन ऑडियंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा रही भूत बंगला, पति पत्नी और वो ढो, और बॉक्स ऑफिस पर अभी तूफान मचा रही है। भूत बंगला फिल्म का फुल रिव्यू आइए एक नजर देखते हैं। स्टार कास्ट में हैं अक्षय कुमार, तब्बू, परेश रावल और राजपाल यादव, जिसे डायरेक्ट किया है प्रिया दर्शन ने। स्टोरी है, कहानी एक हॉन्टेड प्लेस की है, जहां शादी के लिए आए लोग धीरे धीरे सुपरनेचुरल घटनाओं में फंस जाते हैं। फिल्म की शुरुआत प्योर कॉमेडी से होती है, फिर सस्पेंस और हॉरर का लेयर जुड़ता जाता है। क्लाइमेक्स इमोशनल प्लस फुकी फील देता है। अक्षय कुमार की विंटेज कॉमेडी टाइमिंग, परेश रावल और राजपाल की यादव की हिलेरियस केमिस्ट्री, प्रियदर्शन का क्लासिक कंफ्यूजन कॉमेडी स्टाइल, फिल्मी ऑडियंस के लिए एंटरटेनमेंट पैकेज है ये भूत बंगला। और इस फिल्म के कुछ वीक पॉइंट्स है। कुछ हॉरर सीन्स प्रिडिक्टेबल लगते हैं, म्यूजिक एवरेज माना जा रहा है, सेकेंड हाफ थोड़ा अनइवन फील करता है। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लव रियोट और अक्षय कमबैक एंटरटेनर कहा। कुछ व्यूअर्स का कहना है कि फर्स्ट हाफ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल फिल्म एंटरटेनिंग है। फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 243 करोड़ पार कर चुकी है और अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रही है। पति पत्नी और वो दो फुल रिव्यू। इस फिल्म में स्टार कास्ट है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वामिका गब्बी। कहानी है एक मैरिड कपल की जिंदगी, अचानक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और रिलेशनशिप चाव में फंस जाती है। प्रयागराज बैकड्रॉप, मॉडर्न मैरिज कॉमेडी, इमोशनल प्लस कॉमिक कंफ्यूजन है। और क्या खास बात है इसमें, आयुष्मान की नेचुरल कॉमिक टाइमिंग, वीटी डायलॉग, सारा अली खान की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस, लाइट हार्टेड एंटरटेनमेंट। और कुछ वीक पॉइंट्स हैं, स्टोरी बहुत ही प्रिडिक्टेबल है, फर्स्ट पार्ट जितना स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट नहीं। ऑडियंस का रिएक्शन है, ट्विटर एक्स पर अर्ली रिएक्शन काफी पॉजिटिव रहे। कई व्यूअर्स ने सारा अली खान को सीन स्टीलर बताया, लेकिन क्रिटिक्स और ऑडियंस रिव्यूज मिक्स्ड हैं। फिलहाल कार्यक्रम में सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत, फिल्म कभी अलविदा ना कहना से। आवाज दी है शंकर एहसान लॉय और साथियों ने।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों इस वक्त आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप में। दोस्तों अगर आपका वीकेंड प्लान है घर पर चिल प्लस विंज वॉच प्लस पॉपकॉर्न तो इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर आने वाला है एंटरटेनमेंट का बड़ा धमाका। तो चलिए जानते हैं कौन सी फिल्म और वेब सीरीज किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर किस दिन रिलीज हो रही है। पहला है चांद मेरा दिल, ये नेटफ्लिक्स पर उपलब्ध रहेगा। रिलीज होगी 22 मई 2026 को। स्टार कास्ट है अनन्या पांडे और लक्ष्य। स्टोरी है एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा जहां प्यार, हार्ट ब्रेक और म्यूजिक का इमोशनल मिक्स देखने को मिलेगा। ये फिल्म यंग रोमांस लवर्स की प्लेलिस्ट बनने वाली है। ओटीटी राइट्स नेटफ्लिक्स के पास है और थियेट्रिकल रिलीज के बाद स्ट्रीमिंग होगी। अगला है इंस्पेक्टर अविनेश सीजन 2, ये जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध रहेगा। स्टार कास्ट है रणदीप हुड्डा। इस सीजन में अविनाश मिश्रा और डेंजरस क्रिमिनल्स के बीच इंटेंस मुकाबला दिखाया गया है। एक एक्शन क्राइम थ्रिलर ग्रिटी पुलिस ड्रामा है। अगर क्राइम थ्रिलर्स पसंद है तो ये वीकेंड आपका बन गया। अगला है धुरंधर द रिवेंज, ये नेटफ्लिक्स पर और जियो हॉटस्टार इंडिया पर जल्द ही स्ट्रीमिंग की जाएगी और स्टार है रणबीर सिंह। हाई ऑक्टेन रिवेंज थ्रिलर जिसमें एक्शन और अंडरवर्ल्ड ड्रामा भरपूर है। खास बात है ओटीटी वर्जन में कई एक्स्ट्रा सीन्स और एक्सटेंडेड एक्शन मौजूद है। थिएटर में जो नहीं दिखा ओटीटी पर वो अनसेंसर्ड वर्जन दिखने मिलेंगे। अगला है कर्तव्य, ये नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी। स्टार कास्ट है सैफ अली खान और राशिका दुगल। स्टोरी है एक ऑनेस्ट कोव की कहानी जो ड्यूटी और मॉरालिटी के बीच फंस जाता है। इसे आप क्यों देखें, एक डार्क क्राइम ड्रामा, स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस और सस्पेंशियल इन्वेस्टिगेशन है और क्राइम थ्रिलर लवर्स के लिए ये वीकेंड जैकपॉट है। अगला है प्रोजेक्ट हेल मैरी, ये प्राइम वीडियो पर उपलब्ध रहेगा। स्टार है रियान गोसलिंग। स्टोरी एक एस्ट्रोनॉट अकेले स्पेस मिशन पर अर्थ को बचाने निकलता है। ये एक साईफाई विजुअल्स इमोशनल सर्वाइवल स्टोरी और ग्लोबल ब्लॉकबस्टर बज है। स्पेस सस्पेंस और सर्वाइवल साईफाई लवर्स के लिए परफेक्ट वॉच। अगला है गुड ऑमेंस सीजन 3, ये भी प्राइम वीडियो पर उपलब्ध रहेगा। स्टोरी है एंजल और डेमन की फनी फैंटेसी जर्नी, इस बार और भी चाओतिक होने वाली है। फैंटेसी और कॉमेडी का ऐसा कॉम्बो जो बिंज वॉच करने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों ये था कुछ अपकमिंग ओटीटी पर रिलीज होने वाली फिल्म और वेब सीरीज की जानकारी। आइए आज की फिल्मी लहर कार्यक्रम में एक और गीत सुनते हैं। आवाज दी है अलका याग्निक ने फिल्म कोई आपसा से।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम फिल्मी गपशप। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम के अंत में सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में फिल्म कृष से ये आखिरी गीत।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का फिल्मी गपशप कार्यक्रम यही समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। गोथेनबर्ग पहुंचने के तुरंत बाद श्री मोदी ने प्रवासी भारतीय समुदाय से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। ये श्री मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री मोदी सम्राट हेराल्ड पंचम और महारानी सोनिया से मिलेंगे और प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। यह यात्रा भारत नॉर्वे संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा करने और उन्हें मजबूत बनाने के तरीकों को खोजने का अवसर प्रदान करेगी। इसमें व्यापार और निवेश पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 3रा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कल होगा। इस सम्मेलन में श्री मोदी के साथ नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री शामिल होंगे। साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सीवी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के 2 देशों के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये दौरा दोनों देशों के साथ भारत मित्रता के दायरे को और बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि इस दौरे का उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को बढ़ाना और रक्षा औद्योगिक साझेदारी को मजबूत करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष सम्मेलन का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन आज केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। श्री सतीशन ने कल 21 सदस्यीय यूडीएफ मंत्रिमंडल की घोषणा की। शपथ लेने वाले 21 मंत्रियों में सतीशन सहित 14 विधायक पहली बार मंत्री बन रहे हैं। राज्यपाल राजेंद्र अरलेकर को मंत्रियों की सूची सौंपने के बाद श्री सतीशन ने कहा कि यूडीएफ मंत्रिमंडल के सभी सदस्य एक साथ शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व प्रधानमंत्री HD देवेगौड़ा को बधाई है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने देवेगौड़ा जीवन

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आरजे कारग और शुरू हो चुका है आपका सबसे पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। यहां एक ही रूल चलता है, आप मैसेज भेजिएगा और हम गाना बजाएंगे, सिंपल स्वीट और बिल्कुल दिल से। तो दोस्तों, अगर कोई याद सताए, कोई स्पेशल डेडिकेट देना हो या सिंपली आज

मूड हो अपना फेवरेट गाना सुनने का तो तुरंत भेजिए अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट टेक्स्ट मैसेज के जरिए। हमारा नंबर है 9436887808। बस लिखिए अपना नाम, आपकी जगह और जिस गाने पर दिल आ गया हो और फिर देखते जाइए आपका गाना सीधे हमारे स्टूडियो से ऑन एयर। ये है रेडियो ऑन डिमांड, जहाँ प्लेलिस्ट बनाते हैं आप और मस्ती लेकर आते हैं हम। तो चलिए शुरू करते हैं आज का म्यूजिकल सफर। तो फर्स्ट मैसेज की ओर बढ़ते हैं और ये पहला मैसेज हमें आया है गिरन तेरोन कार्बी अंगलोंग दोलामारा से। गिरन जी ने आज हमें सॉन्ग फरमाइश की है, हम किसी से कम नहीं फिल्म से क्या हुआ तेरा वादा गीत को आवाज दी है मोहम्मद रफी और पूर्णिमा ने। तो गिरन तेरोन जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम का पहला नगमा।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और अगला मैसेज हमें आया है हमारे रेगुलर लिस्टनर्स टेंशन क्रो, रोजमेरी टेरोन पी शार्लोक क्रो, लंकंगसम कर्ब अंगलोंग डिस्ट्रिक्ट से। आप लोगों ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है प्यार भरा दिल फिल्म का टाइटल ट्रैक को। आवाज दी है अनुराधा फोदवाल और उदित नारायण ने। टेंशन क्रू, रोजमेरी टेरोन पी शार्लोक क्रू, आप तीनों के फरमाइश पर लीजिए सुनते हैं आज के इस कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, आकाशवाणी ईटानगर के FM 103.1 MHz पर। दोस्तों, बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। अगला मैसेज हमें आया है रोमेश पात्रो, रूनू पात्रो और लक्की जी की तरफ से, गोलाघाट असम से। आप लोगों ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है स्वर्ग से सुंदर फिल्म का टाइटल गीत को। रोमेश, रूनू और लक्की जी, हमसे जुड़ने के लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आप तीनों के फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

0: दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। हम लौटेंगे अगले मैसेज के साथ इस छोटी सी अंतराल के बाद।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: ब्रेक के बाद आप सभी प्यारे श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत है कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर और ये मैसेज हमें आया है हिग बागरा वेस्ट सियांग अरुणाचल प्रदेश से गुम्मे माई बागरा जी की तरफ से। गुम्मे जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है फिल्म दर्द से। लता मंगेशकर के आवाज में गीत के बोल है ना जाने क्या हुआ। और गुमे जी ने आपने इस गीत को खास डेडिकेट किया है रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हेनकर रोकोम बादो सार जी को, जो एक मशहूर कवि और गीतकार है। तो गुमे माई जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज में दर्द फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं आपके पसंदीदा शो रेडियो ऑन डिमांड। तो बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है शिलोंग से, भेजने वाले हैं आयरिस जी ने। आयरिस जी ने हमें सॉन्ग फरमाइश की है कट गीत को सुनने का। तो आयरिस जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आपके फरमाइश पर ये गीत को। उम्मीद करता हूँ कि ये सही गीत होगा, क्योंकि आपने बस गीत के बोल लिखे हैं, आपने सिंगर का नाम या फिल्म का नाम नहीं लिखा है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैं सही गीत आपके लिए प्ले कर रहा हूँ।

दोस्तों आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा नंबर है 9436887808। आप इस नंबर पर अपना सॉन्ग रिक्वेस्ट हमें मैसेज के जरिए भेज सकते हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें आया है हमारे रेगुलर लिसनर्स दुगेश नागिनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार जी की तरफ से, ग्राम जसवादी खंडवा मध्य प्रदेश से। दुर्गेश जी और आपके परिवार ने आज हमें सॉन्ग फरमाइश की है जय हो फिल्म का तेरे नैना गीत को। तो दुर्गेश जी और आपके सारे परिवार को हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आइए सुनवाते हैं आप लोगों की फरमाइश पर जय हो फिल्म का ये बेहद खूबसूरत गीत।

दोस्तों, इस वक्त आप सुन रहे हैं आपके पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड, आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें भेजने वाले ने अपना नाम और पता नहीं लिखा है, बस आपने आफरी आफरी गीत को सुनवाने का रिक्वेस्ट किया है। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, अगली बार अपना नाम और पता जरूर लिख भेजें, कोई नहीं, पर आपके फरमाइश को हम जाया नहीं जाने देते हैं। चलिए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर कार्यक्रम का अगला गीत को।

दोस्तों, बढ़ते हैं आज के रेडियो निर्माण कार्यक्रम का अगला और अंतिम मैसेज की ओर। और ये मैसेज हमें भेजने वाले हैं आरब जी ने। आरब जी ने अपना पता नहीं लिखा है, आप किस जगह से हमें लिख रहे हैं, पर आपने हमें सॉन्ग रिक्वेस्ट किया है बॉर्डर टू फिल्म का, संदेश से आते हैं गीत को। तो आरब जी, उम्मीद करता हूँ इस वक्त आप हमें सुन रहे होंगे। आइए सुनवाते हैं आपकी फरमाइश पर आज के हमारे इस रेडियो निर्माण कार्यक्रम का अंतिम गीत को।

दोस्तों, इसी गीत के साथ ही आज का रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आज का ये अंक आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आज की पहली प्रसारण सभा के समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता PB द्योरी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण FM 103.1 MHz पर, और आगे के सफर में आपके साथ होंगे RJ बामिन सुम्पी जी। और अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। तब तक मुझे यानी अपने रेडियो दोस्त कारगर रुबा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। केरलम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व वाली नई यूडीएफ सरकार ने आज तिरुवनंतपुरम में शपथ ली।
3: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वाली स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
2: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और आईयूएमएल नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। तिरुवनंतपुरम में 21 सदस्यीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह जारी है। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन से बातचीत की। श्री मोदी दो दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को दोनों देशों के बीच आपसी संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ये प्रधानमंत्री मोदी का 31वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन ने डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत की प्रगति की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा के चौथे चरण में आज नॉर्वे जाएंगे। श्री मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे और द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। श्री मोदी की ये नॉर्वे की पहली यात्रा है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की 43 वर्ष बाद नॉर्वे की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि स्वीडन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने वाले उद्योगपतियों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत में गहरी रुचि दिखाई है। यूरोपीय उद्योगपतियों के गोलमेज सम्मेलन के बाद विदेश मंत्रालय के पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने कहा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और वरिष्ठ उद्योगपतियों ने हाल के वर्षों में भारत में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों का उल्लेख किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से वियतनाम और दक्षिण कोरिया के दौरे पर रहेंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग को गहरा करना, रक्षा औद्योगिक साझेदारियों को मजबूत करना, समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन 18 से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज सुबह एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। दुर्घटना उस समय हुई जब ट्रक की टक्कर सामने से आ रही वैन से हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। भारत ने गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में 1 रजत और 9 कांस्य सहित 10 पदक जीते हैं। जियांगशान में छठे संस्करण की तुलना में भारत की ये एक बड़ी उपलब्धि है। तेल की बढ़ती कीमतों में पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बाद वैश्विक बाजार के कमजोर रुझानों के चलते घरेलू शेयर बाजार सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट देखने को मिली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। In Keralam, the new UDF ministry headed by senior Congress leader V.D. Satheesan was sworn in today at Thiruvananthapuram. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath to the new ministers. Former opposition leader and former KPCC President Ramesh Chinnathala, present KPCC President Sonny Joseph, former KPCC President K. Muralidharan and IUML leader P.K. Kunhalikutty are among the senior leaders in the new ministry. Swearing-in ceremony of the 21-member ministry is continuing at Thiruvananthapuram. Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Prime Minister Modi was awarded Sweden's highest honour, the Royal Order of the Polar Star Degree Commander Grand Cross, in recognition of his exceptional contributions to bilateral ties. This is Prime Minister Modi's 31st international honour. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. The two leaders also agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded India-EU FTA for the benefit of their people. Prime Minister Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi mentioned about strong domestic demand.

श्रोताओं, आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

कल बुरा था आज अच्छा आएगा, वक्त ही तो है रुक थोड़ी न जाएगा। जी हाँ श्रोता, इस विचार के साथ एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। श्रोताओ, आप इस वक्त सुन रहे हैं हमारे आज के दूसरे ट्रांसमिशन को, और इस ट्रांसमिशन में अब से लेकर शाम के 4:20 तक मैं आपके साथ रहूंगी, यानी कि आपकी रेडियो साथी बामिन सुम्पी। और श्रोताओ, इस ट्रांसमिशन के सभी कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं HPT में मौजूद सहकर्मियों के साथ प्रसारण निष्पादक एल ताली और तकनीकी अभियंता दंदा कुमार। तो आइए श्रोताओं, शुरू करते हैं हमारे इस सभा के पहले कार्यक्रम को, यानी कि फिल्मी लहर को, और जल्दी से आपको सुनवा देते हैं इस ट्रांसमिशन का पहला गीत।

प्यारे श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्मी लहर। और आप में से जो हमें पहली दफा आज सुन रहे हैं, तो आप सबको मैं बता दूं कि आप ना सिर्फ हमारे बजाए हुए गीतों को एंजॉय कर सकते हैं, बल्कि आप अपनी ओर से रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा कार्यक्रम रेडियो डिमांड जो सुबह 10:10 पर शुरू होती है, आप वहां पर अपने सॉन्ग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। और अगर आपके पास हमारे कार्यक्रमों को बेहतर बनाने के लिए आपके पास अगर कोई सुझाव हो, तो वो भी आप हमें जरूर लिखकर भेजिएगा। हमारा नंबर है 9436887808, 9436887808 पर आप हमें अपने मैसेजेस भेज सकते हैं। हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आपको सुनवाते हैं हमारे कार्यक्रम फिल्मी लहर का ये आखिरी गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्मी लहर। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो कि है पाश्चात्य गीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेस्टर्न मेलेडीज। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन की अपनी दो दिन की यात्रा के बाद नॉर्वे के लिए रवाना हो गए हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर वे उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। सम्मेलन आज से 23 मई तक चलेगा। इस वर्ष का विषय है वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, साझा जिम्मेदारी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मेलन वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को दर्शाता है।

0: केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन नियम वी स्थापित भारत भरणघटनयोड निर्व्याज विश्वस्त।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। समारोह में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, वायनाड से लोकसभा सांसद प्रियंका गांधी, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री, केरलम के निवर्तमान मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर सहित कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग आधा प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 321 अंक गिरकर 74,917 जबकि निफ्टी 113 अंक लुढ़क कर 23,530 पर था। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his two-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor, to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honour for foreign heads of government, symbolizing the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defense Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available in only 16 districts of Chhattisgarh. The state government has now

प्यारे श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर जो है नॉन फिल्म सॉन्ग्स। इस कार्यक्रम में हम सबसे पहले आपको सुनवाएंगे द क्वीन ऑफ इंडी पॉप आशा भोसले की क्लासिक गीत रात शब्द में। इस गीत को जब ये गीत रिलीज हुआ था, इस गाने ने जितनी पॉपुलैरिटी हासिल की उसकी म्यूजिक वीडियो ने भी उतनी ही पॉपुलैरिटी, उतनी ही फेमस हो गई थी। और इस म्यूजिक वीडियो में थे मिलिंद सोमन एंड हेली ब्रूडी। तो चलिए आपको सुनवाते हैं ये क्लासिक इंडी पॉप सॉन्ग।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स में अगला गीत जो आप सुनेंगे वो एक क्लासिक पंजाबी पार्टी सॉन्ग है। इस गीत को ओरिजिनली रिलीज किया गया था 1980s में मलकीत सिंह द्वारा, फिर 1991 में इसे री रिलीज किया गया इसके एडिटेड वर्जन के साथ, जिसे रिलीज किया था बाली सागू ने। और इस म्यूजिक वीडियो में नजर आई थी मलाइका अरोरा। और इस गाने की तो क्या ही बात करें, इस म्यूजिक वीडियो ने ग्लोबली अपना सक्सेस देखा है और इसके बाद हर शादियों में, हर पार्टी में ये गीत बजने लगा। तो चलिए आपको अभी सुनवा देते हैं कि आइकॉनिक सॉन्ग।
1: ओए पैन दा व्याह है गाय, एयरपोर्ट जान दी कोई जरूरत नहीं, समझ गया?

श्रोताओं, इस समय मौसम का हाल ऐसा है कि कहीं धूप है तो कहीं बारिश, और हमें जीवन के हर पहलू को, हर पल को बिल्कुल एंजॉय करना चाहिए। जैसे ही हम सनशाइन को एंजॉय करते हैं, वैसे ही हमें रेन ड्रॉप्स को भी एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि किसी ने कहा है, कोई रंग कहाँ होता है बारिश के पानी में, कोई रंग कहाँ होता है बारिश के पानी में, फिर भी सारी फिजा को रंगीन कर देता है। तो आइए श्रोताओं, सुनते हैं हमारे अगले गीत में कि बारिश को किस तरह से एंजॉय करना चाहिए, शुभा मुद्गल की आवाज में उनके एल्बम अब के सावन से।

श्रोता कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स को समाप्त करते हैं हमारे इस आखिरी गीत से। इस गीत के आर्टिस्ट हैं ऋत्वेज श्रीवास्तव और उनका ये गीत उड़ गए, ये पहले प्यार के फीलिंग्स को, इमोशंस को बड़े ही बखूबी से दर्शाते हैं। तो आइए सुनते हैं इस गीत को।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम नॉन फिल्म सॉन्ग्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, यानी कि गीत माला की ओर।

श्रोताओं, कार्यक्रम गीतमाला में आप सबका स्वागत है। ये कार्यक्रम खास करके हमारे वीर जवानों के लिए है, उनके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, हमारी सुरक्षा करते रहते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए भी हमने ये खास प्रोग्राम तैयार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को हमारे पहले गीत के साथ।

श्रोताओ, अगर किसी पर मर मिटने को इश्क कहते हैं तो एक फौजी से बड़ा कोई आशिक नहीं जना। तो ए भारत के वीर जवानों, तुझे है हमारा कोटि कोटि सलाम।

श्वेता, हमारे वीर जवानों की बहादुरी, उनके सेक्रीफाइसेस को देखकर इस वक्त देश में शायद कई सारे नौजवान प्रेरित हो रहे होंगे, उनके मन में कई सारे भावनाएं जाग रहे होंगे, खास करके हमारे जेन जी, जो इस वक्त देश दुनिया में हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कई सारे रेवोल्यूशन खड़ा कर रहे हैं। और अगला गीत जो आप सुनेंगे, ये गीत जेन जी के उनके हर एक ऑब्जेक्टिव्स को, उनके हर एक भावनाओं को बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाती है।

हमारे वीर जवानों के लिए किसी ने बहुत ही खूब लिखा है। वो है भारत माँ के वीर सपूत, ना सताती उन्हें कोई छांव और धूप, हर राह पर आगे चलते वो दिखाते हैं कितने अलग रूप।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतमाला। आपसे थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। इस दौरे में भारत और नॉर्वे के बीच द्विपक्षीय वार्ता और तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन शामिल है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और पांच नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत आज निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में सभी कंपनियों के लिए अवसर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्षों से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की सुधार एक्सप्रेस पूरी गति से चल रही है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को द्विपक्षीय संबंधों में उनके असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चेन्नीथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट

0: टी शामिल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे। कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री बस्तर के लिए रवाना हो गए, जहां वे नेतानार गांव में सीआरपीएफ कैंप परिसर में स्थापित जन सुविधा केंद्र का शुभारंभ करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तार देने के लिए इन दोनों एशियाई देशों का दौरा करने को लेकर उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे का मुख्य उद्देश्य रणनीतिक सैन्य सहयोग, रक्षा औद्योगिक साझेदारी और समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना तथा हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता को प्रोत्साहित करना है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर होने से एक सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। ये हादसा पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। प्रधानमंत्री ने इस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर शोक व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 133 अंक की गिरावट के साथ 75,105, निफ्टी 60 अंक लुढ़क कर 23,584 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। Prime Minister Narendra Modi has left for Norway after concluding his 2-day visit to Sweden today. Mr. Modi, in a social media post, said his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said from elevating their bilateral ties to a strategic partnership, launching the Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor to setting an ambitious goal of doubling bilateral trade in the next 5 years, the discussions were highly productive. He thanked the people of Sweden, the government of Sweden and Prime Minister Ulf Kristersson for the warmth and friendship. Our correspondent covering the Prime Minister's visit to Sweden reports that elevation of bilateral ties to the level of a strategic partnership is guided by the India-Sweden Joint Action Plan 2026 to 2030. The comprehensive roadmap aims to double bilateral economic exchange within the next 5 years and deepen cooperation under the Make in India and Made with Sweden initiatives, particularly in areas such as green hydrogen, semiconductors and advanced manufacturing. A defining moment of the visit was the conferment of the Royal Order of the Polar Star upon the Prime Minister, Sweden's highest honor for foreign heads of government, symbolizing the deepening civilizational and democratic bonds between the two nations. Defence Minister Rajnath Singh departed on a 2-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, he said the visit will further expand the scope of the country's engagement with both nations. He added that the visit will focus on deepening strategic military cooperation, strengthening defence industrial partnerships, and boosting maritime collaboration in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with Minister of National Defence of Vietnam, General Phan Van Giang. Mr. Singh visit also coincides with the 136th birth anniversary of former President of Vietnam Ho Chi Minh on the 19th of May. Union Home Minister Amit Shah today flagged off 400 next-gen Dial 112 vehicles in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh and Deputy Chief Minister Vijay Sharma were also present on the occasion. So far, the Dial 112 service was available.

0: चलिए श्रोताओं, बढ़ते हैं हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जो है आपके फरमाइशों का कार्यक्रम, यानी कि हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश
3: जी, प्यार भरा नमस्कार सर जी।
2: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से
3: जी। मैं जवरडी जिला अमरावती महाराष्ट्र से गौतम राय बोले बात करो सर जी।
2: गौतम राय जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सुनाइए।
3: धन्यवाद सर जी।
2: जी सुनाइए, कैसे हो आप?
3: बहुत मजे में सर जी, लेकिन हमारे यहाँ भीषण गर्मी चल रही है अभी।
2: ओके जी जी।
3: आप 45 से 46 डिग्री तापमान सेल्सियस चालू है सर जी अभी।
2: बाप रे। जी जी जी जी।
3: तो गर्मी के मौसम में बस सहारा था आपका ईटानगर आकाशवाणी मिल रहा है सर जी।
2: क्या बात है।
3: बस आपके आकाशवाणी के प्रोग्राम सुनना और बस घर में बैठ के।
2: ओके जी जी जी। धूप से बचिए, बाहर अगर काम ना हो तो ना निकले।
3: बिल्कुल बिल्कुल जी। सर जी यही तो हम आकाशवाणी की जानकारी भी सुनते हैं सर जी।
2: जी जी जी जी। हाँ जी।
3: हाँ सर जी, मैं आपका नाम जान सकता हूँ?
2: जी मेरा नाम है बोके बागरा।
3: जी जी, धन्यवाद सर जी। हमारा हेलो फरमाइश एकता ग्रुप है।
2: जी जी। हाँ जी।
3: तो हमारे हेलो फरमाइश एकता ग्रुप में आकाशवाणी ईटानगर का फोन नंबर डाला जाता है।
2: अच्छा जी जी जी जी।
3: ताकि इस फोन नंबर को देख के सभी साथी आपके आकाशवाणी ईटानगर को फोन लगे।
2: जी हाँ जी हाँ जी। कब कब रिकॉर्डिंग होती
3: है? और जिन साथियों के फोन लगते उनको अगर किसी कारणवश प्रोग्राम सुनने को नहीं मिला तो उनकी रिकॉर्डिंग हम हमारे ग्रुप में डालते सर जी।
2: अच्छा, ग्रुप में भी डाल देते हैं आप?
3: बिल्कुल, ताकि वो सुन सके।
2: जी जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है ये तो।
3: ये हमारे पूरे भारत में सबसे ऊपर हमारे एक्टिव श्रोता है आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनने वाले और कार्यक्रम में फोन लगाने वाले
2: जी,
3: सभी एक्टिव होता है सर जी।
2: जी, सभी श्रोताओं को हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमसे जुड़ते रहिए। तो गौतम जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
3: खास करके तो आज हमारा मित्र लोकेंद्र वर्मा जी और अल्ताफ हुजरे सर जी, सभी हेलो फरमाइश एकता रेडियो ग्रुप श्रोता साथियों के लिए मकसद फिल्म का गाना सुनवाना चाहता हूँ सर जी।
2: ओके, मकसद फिल्म का कौन सा गाना?
3: वही गाना है किशोर कुमार ये जानकी की आवाज में, संगीत भक्ति लहरी का, और गीत के बोले हाय हाय हाय गर्मी है कहाँ है।
2: ओहो, गर्मी के मौसम में गर्मी वाला गाना ही आप सुनना चाहते हैं?
3: बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो इस गीत का आनंद आप भी लीजिए सर जी।
2: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
3: सुस्पष्ट आवाज में आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम हमारे महाराष्ट्र अमरावती जिले में सुनाई देते हैं।
2: क्या बात है। जी जी जी जी। हाँ जी,
3: बहुत ही सुस्पष्ट आवाज में सुनाई देते सर जी।
2: ओके, ये तो बहुत ही अच्छी बात है।
3: बिल्कुल बिल्कुल। और हम बहुत सारे हमारे गाँव के रहो या हमारे ग्रुप सभी साथियों को हम प्रेरित करते हैं कि आकाशवाणी ईटानगर के प्रोग्राम सुनो, बहुत अच्छे रहते हैं, जानकारी भी अच्छी रहती है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए। तो गौतम जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
3: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
2: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो, नमस्ते सर।
0: नमस्ते
1: मैं काठाड़ जिला से बोल रहा हूँ, जवाहरलाल वर्मन।
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
1: हाँ, थैंक यू सर। मेरा प्यार भरा नमस्कार लीजिए
0: जी। हमारी ओर से भी आपको बहुत ही प्यार भरा नमस्कार। और
1: आपके साथ। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में
0: जी
1: थोड़ा सा बात करने का मौका मिलता है तो दिन भर मन अच्छा रहता है
0: क्या बात है जी। हमें भी
1: और
0: बहुत ही अच्छा
1: मन में
0: लगता है
1: खुशियाँ भी बढ़ जाता है सर।
0: जी। और सुनाइए, क्या चल रहा है अभी?
1: अभी तो सर थोड़ा काम काज चल रहा है क्योंकि बारिश का मौसम आ गया ना,
0: जी हाँ जी।
1: तो हाँ, तो बारिश का मौसम आ गया तो थोड़ा सा घर का काम तो
0: हाँ
1: रहता
0: जी हाँ
1: है।
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: हाँ,
0: जी
1: तो
0: तो आज कैसा है मौसम? आज बारिश हो रही है कि धूप?
1: मौसम नहीं सर, आज कल रात भी बारिश नहीं हुआ।
0: अच्छा, बारिश हुआ नहीं ना अभी? ओके
1: नहीं
0: ओके।
1: सर,
0: हाँ जी, तो कहिए, आज जवाहरलाल जी कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी का सुर में सजा या दिल धड़कने वाला एक गाना सुना दीजिए।
0: अच्छा जी, हाँ जी।
1: वो गाना लिखा है महान गीतकार मजरू सुल्तानपुरी जी ने। हम किसी से कम नहीं फिल्म से
0: ओके।
1: आशा जी और रफी जी के जुगल सर में वो गाना, ए लड़का हाय अल्लाह
0: हाय
1: कैसे है
0: अल्लाह, कैसा
1: दीवाना,
0: है दीवाना।
1: कितना
0: जी।
1: मुश्किल है तौबा किसको समझाना, धीरे धीरे दिल बेकरार होता है, होते होते प्यार होता
0: प्यार
1: है।
0: होता है। जी जी
1: जी
0: जी
1: हाँ,
0: जी
1: वो
0: हाँ
1: गाना
0: जी
1: सुना दीजिए।
0: हाँ जी जी
1: राहुल
0: जी
1: देव बर्मन दा का सजाया हुआ जंत्र संगीत का सुर एक अलग तरीका से सुर का जंगर होता है।
0: जी
1: जी हाँ, गाना में बर्मन दा का वो सुर बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने वो गाना में सुर डाला है। मुझे
0: जी
1: वो गाना सुना दीजिए क्योंकि वो गाना के पहले एक म्यूजिक का सुर है, वो बहुत एक झंकार एक सुर है। वो
0: ओके।
1: गाना
0: हाँ
1: सुना दीजिए सर, और
0: जी हाँ जी।
1: आप अच्छा रहे, सुस्त रहे,
0: और
1: इसी को कामना करते हैं।
0: डेडिकेट कीजिए।
1: आओ सरी,
0: हाँ जी
1: डेडिकेट तो करना चाहता हूँ सर,
0: हाँ
1: पहले
0: हाँ
1: आपके
0: बहुत
1: और भाई
0: धन्यवाद।
1: प्रेमजीत चक्रवर्ती है, आशुतोष देवनाथ है, और भुवन संगीता देवने, अविनाश भैया है, और सुनने वाले सब लिसनर्स के लिए
0: सभी
1: सर।
0: को आप सुनाना चाहते हैं
1: जी हाँ, जी हाँ,
0: जी। जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का
1: हाँ
0: गाना।
1: धन्यवाद सर,
0: ओके,
1: धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश,
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: हम आलरी वागड़ा साहब, स्वागत प्रेम प्यार में नमस्कार।
0: प्यार भरा नमस्कार आपको भी हमारी ओर से और आकाशवाणी ईटानगर परिवार की ओर से।
1: जी हृदय से धन्यवाद। मैं
0: जी
1: आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश वार्तालाप कर रहा हूँ। मानवर आप कैसे हैं?
0: जी मानेवर, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, अच्छे में हूँ, मजे में हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो?
1: मैं भी अच्छा हूँ। आप
0: मौसम?
1: लोगों का स्नेह है, शुभकामनाएं हमारे साथ में है
0: जी आप भी
1: और
0: अच्छे हैं, मौसम भी
1: मैं
0: बढ़िया
1: आकाशवाणी
0: होगा।
1: के कार्यक्रम सुनते हुए आनंद से घर परिवार में रहता हूँ
0: जी
1: और मौसम का आनंद ले रहा हूँ। साथ में आपको बताना चाहता हूँ कि मौसम कुछ उलट पलट उलट पलट हो रहा है। कभी बारिश होती है, कभी गर्मी होती है और
0: ओके।
1: अभी उमस भरी गर्मी से हम परेशान हो रहे हैं। मैं सेवानिवृत्त हो चुका हूँ, घर पे
0: जी
1: बच्चों साथ में आनंद पूर्वक रहता हूँ
0: जी जी जी
1: और
0: जी
1: दोनों बेटे जॉब में हैं, अपने काम से रहते हैं। मैं घर पे रहता हूँ आराम
0: जी
1: से और आकाशवाणी से जुड़ा रहता हूँ, आप लोगों
0: क्या
1: से वार्तालाप करता हूँ। बहुत ही सुखद अनुभूत होती है,
0: क्या
1: आपका
0: बात है।
1: स्नेह मिलता है, प्यार मिलता है, अपनापन मिलता है और हमारा भरपूर मनोरंजन होता है।
0: और बेटे अभी वही मथुरा में फिर या फिर बाहर कहीं जॉब कर रहे हैं?
1: नहीं, दोनों बेटे तो बाहर जॉब करते हैं लेकिन बड़ा
0: अच्छा
1: बेटा जो है वर्क फ्रॉम होम है तो
0: ओके।
1: ऑनलाइन ये वर्क करता है, जॉब में रहता है, ड्यूटी
0: अच्छा
1: करता है
0: अच्छा जी जी जी
1: और
0: जी
1: छोटा बेटा दुबई में अपने हेडक्वार्टर पर रहता है।
0: ओ क्या बात है। और बच्चे सुनते हैं
1: जी
0: रेडियो या फिर आप अकेले ही सुनते हैं?
1: मैं ही अकेला
0: अच्छा
1: सुनता हूँ, उनको जो रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ।
0: अच्छा वाह वाह वाह, क्या बात है। तो शारदा प्रसाद जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मानवर आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है चोरी चोरी। ये रात भीगी ये मैं से जाए उठा धीरे धीरे ये चांद प्यारा, ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आपसे
0: जी
1: अनुरोध करना।
0: चांद प्यारा प्यारा और प्यारे से गीत को आप किन लोगों को डेडिकेट करना चाहेंगे?
1: सर्वप्रथम मैं याद करता हूँ अपने परम मित्र वागरा साहब से, वो
0: बहुत बहुत धन्यवाद
1: जो ईटानगर से हैं,
0: जी।
1: हमारे मित्र हैं अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन्द्र वर्मा है, राजू यादव, राजू लवानिया जी हैं, के चंद्र अग्रवाल जी, सतीश रघुवंशी जी हैं, राकेश कुमार जी हैं, पुरुषोत्तम जी, पुष्कर नाथ जी और पूरन वर्मा, इन सभी दोस्त साथ में,
0: जी
1: केशव प्रसाद शर्मा है, विद्यारत्न शर्मा जी हैं और प्यारे दोस्त विजय कुमार पांडे जी हैं। इन सभी दोस्तों के साथ में कैसा खूबसूरत गीत
0: जी
1: आकाशवाणी ईटानगर से सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। तो शारदा प्रसाद जी सुनते हैं चोरी चोरी फिल्म का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी हृदय से धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी,
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।
0: जी, नमस्कार। और कहिए, कैसे हैं आप?
1: मैं तो बहुत ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर?
0: जी, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ। और मौसम भी बढ़िया होगा आपके वहाँ पे सिक्किम में?
1: मौसम तो बारिश हो रहा है इधर, तो अभी
0: अच्छा
1: थोड़ी देर
0: अच्छा
1: रुक
0: अच्छा
1: गया है अभी तो। जी
0: ओके। हाँ, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो ही रही है जी,
1: जी
0: मौसम बहुत ही बढ़िया है। तो हो जाए परिचय
1: जी मैं सिक्किम से अर्जुन प्रधान बात कर रहा हूँ
0: जी। अर्जुन
1: जी,
0: प्रधान
1: तो
0: जी,
1: जानते होंगे।
0: जी हमारे प्रिय श्रोता।

0: भी लोग तो जानते ही हैं, फिर भी नाम तो बताना जरूरी होता है ना।
1: जी,
0: जी जी
1: परिचय
0: जी
1: देना
0: हाँ जी
1: पड़ता है ना।
0: हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी,
0: तो अर्जुन जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: अभी तो ये बारिश का सीजन शुरू हो रहा है ना,
0: जी
1: अभी
0: जी
1: तो बरखा याम यानी कि रेनी सीजन बोलते हैं
0: जी
1: ना,
0: जी हाँ जी हाँ जी
1: वो शुरुआत हो चुका है। और इसी उपलक्ष्य में सुना दीजिएगा मोरा प्रेम से टिपू टिपू बरसा पानी।
0: ओके, टिप टिप बरसा पानी, वहां तो पानी बरस ही रहा है। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: जी, सबसे पहले तो आपके लिए
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: धन्यवाद जी, और पूरे ईटानगर परिवार को दिल के थे।
0: जी
1: और हम मेरा दोस्त है श्रीकांत जोशी महाराष्ट्र से, लुकिंदा वर्मा जी है, मूलचंद लोधी जी है, गौरदास लोधी जी है, ओम प्रकाश जी है, और हरिनारायण गुर्जर जी है, दीपेन कोठारी जी है, गोलू कुमार जी है, गणेश दास जी है, बिहार से विमल ऋषि जी है, और हमारे पूनम जी कानपुर से हैं,
0: जी
1: और हमारे मांगीलाल चंदेल भैया जी हैं, है ना, और जितने भी दोस्त है सभी के लिए
0: सभी को
1: लिखे थे
0: आप
1: मेरे
0: जी
1: पास।
0: सुनाना चाहते हैं। बहुत
1: जी
0: बहुत शुक्रिया अर्जुन जी कॉल करने के लिए। सुनते हैं मोहरा फिल्म का गाना। कॉल कर

0: हेलो, फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार
1: मैं ओम प्रकाश नेमा, विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर।
0: जी। ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप, सुनाइए।
1: बहुत अच्छी है सर, बस गर्मी पड़ रही है सर ज्यादा।
0: ओके, थोड़ा गर्मी से बच के रहिए ताकि आपको।
1: 44-43 चल रहा है हमारे यहाँ।
0: जी, ये तो भयंकर गर्मी है,
1: जी
0: तो गर्मी से बचिए और पानी खूब पीजिए।
1: जी
0: जी, और घर में बैठ के हमारा प्रोग्राम सुनते रहिए।
1: जी सर, आपका प्रोग्राम सुनते रहते हैं सर।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो ओम प्रकाश जी, आज कहिए कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं।
1: आज हम सुनेंगे प्रेम कहानी, फिल्म का नाम है,
0: हाँ जी।
1: और गीत के बोल है, फूल आस्था फेंको बड़े नाजुक होते हैं।
0: ओहो, बहुत ही बढ़िया गीत।
1: जी,
0: और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को।
1: हम सुनना चाहेंगे शारदा प्रसाद प्रजापति है जी मथुरा से, और लोकेंद्र वर्मा जी हैं, और भी लोग हैं, बहुत से मित्र हैं सर।
0: अच्छा, सभी मित्रों को आप डेडिकेट करना चाहते हैं इस
1: सभी
0: गीत को।
1: मित्रों के लिए है, डेडिकेट करते हैं, और आपके लिए भी सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे भी डेडिकेट करने के लिए। तो ओम प्रकाश जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: खुद घायल होते हैं फूल आहिस्ता फेंको।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश सर, नमस्कार।
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
2: हरि नारायण गुजर बात कर रहा हूँ सर।
1: हरि नारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप?
2: बढ़िया हूँ सर।
1: और मौसम?
2: मौसम तो गर्मी का है सर।
1: गर्मी है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी,
2: गर्मी बहुत पड़ गई सर।
1: ओके, हमारे यहाँ तो अभी बारिश है।
2: हाँ, आपके यहाँ तो बारिश होती रहती है 12 महीनों।
1: हाँ जी, तो थोड़ा धूप से बचिए।
2: बचने का तो सर कोई चांस ही नहीं है।
1: चांस ही नहीं है। ओके ओके, बाहर तो निकलना ही है।
2: बचने का तो कोई चांस ही नहीं है।
1: जी जी जी,
2: निकलना तो है। धूप में मगर थोड़ा ऐसा होता है कि जैसे सुबह के टाइम में जल्दी घर आ जाते हैं, फिर शाम के टाइम में थोड़ा लेट निकलते हैं घर से।
1: हाँ जी, हाँ जी, वो अच्छी बात है।
2: ये बचाव अपना रहता है बस।
1: जी जी जी जी,
2: गर्म हवाएं बहुत तेज चलती दोपहर में।
1: ओके, तो घर में रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश सुनिए।
2: वो तो सुनता रहूँ, हमको इतना सुनते रहते हैं।
1: ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
2: और सर आपसे बात होती तो और भी आनंद आ जाता है।
1: क्या बात है, हमें भी बहुत ही अच्छा लगता है जी।
2: सर बहुत बुरा नाम है सर आपकी, मजा आता है मेरे को बात करने में। आपको फरमाइश बताया देता हूँ सर।
1: हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी,
2: फिल्म का नाम है मेरी बीवी का जवाब नहीं, और गाने का टाइटल सॉन्ग है सर ये।
1: अच्छा, मेरी
2: जी सर,
1: बीवी का जवाब नहीं।
2: वो लाजवाब ही है, जवाब नहीं है।
1: और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को आप?
2: सर दोस्त है दिल्ली से, रणवीर जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, ओम प्रकाश विश्वकर्मा जी, नरेश प्रजापति जी हैं, इसके अलावा गया लोधी, मंगला चंदेल जी हैं और प्रेमराज विश्वकर्मा जी हैं। सर आप भी हमारे साथ इस गाने को सुनिए, बड़ा मजा
1: जरूर
2: आएगा।
1: सुनेंगे। ओके, जरूर सुनेंगे, कभी सुना नहीं मैंने ये गाना, तो इस
2: जी
1: बार
2: आप
1: पहली
2: सुनिए
1: बार
2: जरूर।
1: सुनूंगा जी। तो हरिनारायण जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
2: ओके सर, धन्यवाद।
1: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, आकाशवाणी ईटानगर। हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: मैं महाराष्ट्र ग्राम कराड़ जिला सातारा से सुकाराम जाधव बोल रहा हूँ सर जी। शुक्रिया,
0: जी तुकाराम यादव जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और जी,
1: धन्यवाद।
0: और कैसे हो आप?
1: आप ठीक है? आप कैसे सर जी?
0: जी मैं तो बढ़िया हूँ। आपके वहाँ मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम क्या, गर्मी बहुत है अभी हमारे
0: गर्मी?
1: इधर। थर्टी
0: ओके,
1: एट थर्टी फोर्टी तापमान
0: बाप
1: रखा है
0: रे।
1: हमारे इधर।
0: ओके, तो गर्मी से थोड़ा बचिए।
1: जी।
0: और काम ना हो तो घर पे रहिए और हमारा आकाशवाणी ईटानगर का हेलो फरमाइश कार्यक्रम सुनिए।
1: हाँ सुनते मोबाइल ऐप
0: ओके, ऐप पे सुनते हैं आप। तो कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: फिल्म बना हुए कारवा
0: ओके, कारवा फिल्म का कौन सा गाना?
1: गोरिया कहा तेरा जैसे रे। हाँ
0: ओ जी, बहुत ही बढ़िया गीत सुना है आपने। और किन लोगों को सुनाना
1: सबसे
0: चाहेंगे इस गीत को?
1: पहले मैं आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ।
0: धन्यवाद जी।
1: हमारे मित्र लोकेंद्र वर्मा जी, गौतम रायबोले जी, सुनील झा जी, दिलीप पहुजा जी, गंगाधर सावनकर जी, पीएसआई राजशेखर जी, विठ्ठल पवार जी, किरण शिंदे जी, गौतम कोकाडे जी, विकास शेड़के जी, श्रीकांत भंडारे जी, हम सब एक गीत सुनना चाहते हैं।
0: ओके, इन सभी के साथ आप सुनना चाहते हैं। तो तुकाराम जी, कॉल
1: शुक्रिया
0: करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
1: शुक्रिया, धन्यवाद।
0: ओके, धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश,
1: हेलो सर, नमस्कार।
0: नमस्कार। आकाशवाणी ईटानगर हेलो फरमाइश कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद सर। सर, ग्राम हीरापुर, जिला सीहोर, मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार बोल रहा हूँ।
0: जी भगवान सिंह जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें कॉल किया।
1: हाँ सर, बहुत सारे दिन हो गए सर।

0: 5-6 महीने से ऊपर हो गए।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कहीं बिजी थे आप?
0: जी सर, मकान बन रहा था इसलिए बिजी थे सर।
1: ओके ओके ओके जी जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और बन गया या फिर अभी?
0: सर कंप्लीट हो गया है, हमने कृषि फार्म पर खेत पर बनाया है।
1: ओ हो, क्या बात है क्या बात है जी।
0: सर इस वक्त तो सर हमारे इधर 40 टेम्परेचर हो रहा है, गर्मी बहुत काफी पड़ रही है सर हमारे इधर।
1: बाप रे, जी जी जी जी
0: जी और लू भी चलती है दिन में सर।
1: ओहो,
0: जी हाँ सर, पानी का ज्यादा पीते हैं और गमछे वगैरह बांध के खेत पर निकलते हैं। गर्मी का
1: ओके
0: पूरा ख्याल रख रहे हैं, अपना अपना भी ख्याल रख रहे हैं, क्योंकि गर्मी बीमार कर देती है अगर
1: जी
0: ज्यादा
1: जी जी
0: पड़ती है
1: जी
0: तो सर।
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल सही बात जी।
0: जी
1: तो
0: तो सर मैं फिल्म का नाम बता देता हूँ
1: हाँ जी हाँ जी
0: आपको।
1: बिल्कुल।
0: फिल्म का नाम है मोहरा, वो गाने के बोले ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, और हमारे लोकेन वर्मा जी है उज्जैन से, उनको डेडिकेट रहेगा। और
1: ओके
0: रमेश प्रजापति, केसे सिंह राजपूत,
1: ओके, तो भगवान सिंह जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, सुनते हैं आपके पसंद का गाना।
0: धन्यवाद।
1: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्ते। खम्मा घणी हुकम।
0: नमस्कार खम्मा घाणी।
1: कैसे हो सर जी?
0: जी बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
1: हाँ, मैं जिला बालोतरा राजस्थान से आपका नियमित श्रोता मोहनलाल प्रजापति।
0: ओके मोहनलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: धन्यवाद जी, शामिल करने के लिए भी धन्यवाद
0: जी। और गर्मी?
1: हाँ, तो 45 डिग्री के आसपास है और अभी आंधी का अलर्ट भी हो चुका है।
0: ओके बाप रे बाप रे। जी जी जी
1: जी आंधी, और आंधी आएगी तो थोड़ी राहत मिलेगी।
0: अच्छा, अभी तक बारिश हुई नहीं आपके वहाँ?
1: नहीं, बारिश तो 2 महीने कम है, लेकिन अभी मतलब आंधी आती रहती है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी जी जी जी तो अपना ख्याल रखिए और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं।
1: हाँ, फिल्म का नाम है सर जी उपकार। उपकार का कोई भी गीत।
0: उपकार फिल्म का कोई भी गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी
0: जी जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: माणक दरिया, उषा बाला देवी प्रजापत, और हेलो फरमाइश एकता रेडियो के तमाम साथी,
0: तमाम साथियों को आप सुनाना चाहते हैं? तो बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश। नमस्कार खम्मा घड़ी सा।
0: नमस्कार खम्मा घणी, कैसे हो?
1: बिल्कुल बढ़िया जी, बढ़िया
0: बढ़िया
1: एकदम।
0: है
1: आप बताइए।
0: जी। मैं भी
1: हाँ
0: बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: जी
0: और
1: जी
0: मौसम का
1: और
0: हाल क्या है?
1: मौसम के भी गर्मी है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर चल रहा है 45 के आसपास।
0: बाप
1: कड़ा
0: रे।
1: कड़ाके वाली गर्मी पड़ रही
0: जी
1: है सर
0: जी जी जी
1: आपके वहाँ का।
0: हाँ, हमारे यहाँ तो बारिश हो रही है
1: अरे वाह क्या बात है, थोड़ी सी
0: जी।
1: हमारे भेज दीजिए।
0: हाँ जी, जरूर भेजेंगे, आप चिंता मत कीजिए। गाने के साथ साथ मैं आपको बारिश भी भेज देता हूँ
1: हाँ, और
0: जी
1: मैं तो देखिए ये है कि बेताब रहता हूँ इस फोन इन प्रोग्राम के लिए कि
0: जी
1: कब बोके बागरा जी से बात हो, कब फरमाइशी गीत बजे। और मैं तो कई अरसे से, कई सालों से आपके आकाशवाणी
0: जी
1: ईटानगर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: कई दोस्तों की मंडली थी वो तो कहीं ना कहीं तक कम हो गई, कहीं अपने अपने काम धंधों में फंसे हुए, कोई अपनी फैमिली
0: हाँ
1: को रिलेटेड
0: जी जी
1: समस्याओं में फंसे, कोई कोई अपने धंधे
0: हाँ
1: अपने
0: जी।
1: बिजनेस में फंसा हुआ। लेकिन मैं नहीं भूलता, मुझे सुनना
0: ओके,
1: आया
0: क्या बात है, क्या बात है। इस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी।
0: जी। इसी तरह से ये प्यार
1: और
0: बनाए रखें।
1: मैं नाम नहीं बताया मैंने, मैं भवानी सिंह राठौड़े सुजानगढ़ राजस्थान से बात कर रहा हूँ, आपका
0: जी जी
1: नियमित
0: जी
1: श्रोता।
0: जी जी जी मुझे तो पता है, लेकिन आप
1: आज आज मैं ना इस प्रोग्राम में आ, चलो
0: चलो।
1: मैं फेवरेट गानों में ना एक है कुमार सानू अलका याग्निक का, कोई दोनों का मैच करता हुआ गाना हो ना वो बजा
0: अच्छा
1: दीजिए।
0: अच्छा अच्छा जी जी जरूर।
1: हाँ,
0: मैं
1: और
0: जी
1: ये गाना आपको और पूरी आकाशवाणी परिवार को डेडिकेट है मेरी ओर से। ठीक
0: ओके, तो कॉल करने के लिए
1: है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का
1: शुक्रिया। ठीक है।
0: गाना।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अरुण एफएम, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: Daviri Satheesan takes oath as Keralam Chief Minister along with 20 Cabinet Ministers. West Bengal Government approves 7th pay commission for state government employees. Union Home Minister Amit Shah flags off 400 emergency response vehicles in Raipur district of Chhattisgarh. And in IPL cricket, hosts Chennai Super Kings to take on Sunrisers Hyderabad this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का ओस्लो में पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्तुर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरुआत से लेकर अगले 5 वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने तक ये चर्चाएं अत्यंत सार्थक रहीं। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उनके स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आई। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के

0: दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रहा है। श्री मोदी ने स्वीडिश कंपनियों से विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बढ़ाने का आग्रह किया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: वडशेरी दामोदर मेनोन सतीशन എന്നാണ് നിയമം വഴി സ്ഥാപിതമായ ഭാരതത്തിന്റെ ഭരണഘടനയോട് നിർവ്യാജമായ വിശ്വസ്തയും।
0: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने यूडीएफ सरकार के 20 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई। नई कैबिनेट में शामिल 16 सदस्य पहली बार मंत्री बन रहे हैं। इसमें कांग्रेस पार्टी के 11 प्रतिनिधि हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 5 मंत्री हैं। नई सरकार में शामिल वरिष्ठ नेताओं में पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रमेश चिनिथला, वर्तमान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सन्नी जोसेफ, के मुरलीधरन और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेता पीके कुन्हालीकुट्टी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद आज नई बनी सरकार ने अपनी पहली आधिकारिक कैबिनेट बैठक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडी सतीशन को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में केरलम की नई सरकार को हर संभव सहयोग का आश्वासन देती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्ड, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण को रोकने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दी। इन विभागों के तहत छात्रवृत्ति योजनाएं जारी रहेंगी। राज्य सरकार ने राज्य की महिलाओं के लिए छोटी और लंबी दूरी की मुफ्त परिवहन सुविधा को भी स्वीकृत किया है। राज्य की महिलाओं के लिए 1 जून से अन्नपूर्णा योजना शुरू की जाएगी, जिसके तहत प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से 3,000 रूपये हस्तांतरित किए जाएंगे। एक ऐतिहासिक फैसले में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार ने सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए अधिकतम आयु सीमा बढ़ा दी है। ग्रुप ए पदों पर भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 वर्ष निर्धारित कर दी गई है। ग्रुप बी पदों के लिए यह सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 45 वर्ष है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल ने आज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 2 प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है, जिसमें आगरा मेट्रो के दूसरे कॉरिडोर के अंतर्गत स्टेशन निर्माण और एलिवेटेड सेक्शन के लिए आवश्यक भूमि का हस्तांतरण शामिल है। केंद्र, राज्य सरकार और उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल निगम के बीच चारबाग से वसंत कुंज तक के पूर्वी पश्चिम कॉरिडोर के लिए लगभग 5,801 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन को स्वीकृति दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
2: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को

0: श्री गोयल ने कहा कि भारत व्यापार महोत्सव का उद्देश्य स्वदेशी व्यापार को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि भारतीय सामान और सेवाएं पूरे देश और दुनिया भर में और भी तेजी से फैलें। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने आज अंतर्राष्ट्रीय महिला समुद्री दिवस के अवसर पर महिला नाविकों के अदम्य साहस को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सोनोवाल ने कहा कि नीतिगत सुधारों के कारण भारत में महिला नाविकों की संख्या लगातार बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति देश के विकास और वैश्विक समुद्री क्षेत्र को एक उज्ज्वल समावेशी भविष्य की ओर ले जा रही है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सार्वजनिक परिवहन और ईंधन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए आज मेरा भारत मेरा योगदान में मेट्रो मंडे अभियान के तहत मेट्रो से यात्रा की। उन्होंने सभी दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की।
1: हम सरकार की ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कहीं पे कोई दिक्कत ना हो, लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे ज्यादा से ज्यादा काम किया जाए और हर व्यक्ति जब थोड़ा थोड़ा भी सहयोग इसमें करेगा तो दिल्ली शहर के लिए ये बेहतरीन होगा। हमारे शहर में पॉल्यूशन से लेकर के हर समस्या का इसका समाधान मिलेगा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले ये सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी वाहन तथा 60 नए राजमार्ग गश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए रवाना किए गए। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विधानसभा अध्यक्ष डॉ सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भी उपस्थित थे।
2: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी मामले में आम आदमी पार्टी के नेता दीपक सिंगला को गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले एजेंसी ने इस मामले में आज सुबह दीपक सिंगला के दिल्ली और गोवा में छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में आज ट्रक और वैन की टक्कर से हुए सड़क हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई। वैन में 2 महिलाओं समेत 10 लोग सवार थे। यह हादसा जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालीसपुर गांव के पास हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजन को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने बताया है कि इस सप्ताह उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के मैदानी इलाकों में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। शनिवार तक उत्तर प्रदेश में लू की स्थिति बनी रहने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों में अधिकतम तापमान में धीरे धीरे 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी का अनुमान है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनास गहर स्टोर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्ष में व्यापार को

दोगुना करने पर सहमत हुए। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन ने 20 मंत्रियों के साथ केरलम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार, और आप हमारे साथ बने हुए हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

श्रद्धा वरुण FM पर अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का, यानी कि हिट्स ऑफ 90s का। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे 90s के कुछ रोमांटिक, कुछ सुपरहिट गानों को।

और इस कार्यक्रम में पहला गीत आप सुनेंगे द आइकॉनिक द ब्लॉकबस्टर फिल्म दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। जी हाँ श्रोताओं, आप सभी तो जानते ही हैं कि इस फिल्म ने रिकॉर्ड कायम किया है, यानी कि मुंबई के एक थिएटर में मराठा मंदिर में ये सबसे लंबी चलने वाली फिल्म है। ये फिल्म जो रिलीज हुई थी 1995 को और तब से लेकर 30 साल से ये फिल्म थिएटर में चली आ रही है। और इस फिल्म का ये गीत तुझे देखा तो ये जाना सनम, ना जाने कितने ही पीढ़ियों के लिए ये प्यार का डेफिनेशन बन गया है। और जब भी आइकॉनिक रोमांटिक सॉन्ग का जिक्र होता है तब वो पीले सरसों के खेत में खड़ा हुआ हीरो मैंडोलिन बजाते हुए ये दृश्य हमारे जहन में सबसे पहले आता है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं उसे रोमांटिक एरा में और सुनवाते हैं ये गीत।

श्रोताओ, आप सभी तो जानते हैं कि जावेद अख्तर कितने उम्दा लिरिसिस्ट हैं। आए दिन उनकी कविताएं, उनके इंटरव्यूज वायरल होते रहते हैं। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को भी कई रिमार्केबल गीत दिए हैं। उनमें से एक गीत है एक लड़की को देखा तो, फिल्म 1942 अ लव स्टोरी से। मेरे हिसाब से तो ये एकदम परफेक्ट सॉन्ग है हर तरीके से, क्योंकि इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने और इसमें प्यार के एहसास को बताया गया है और एक लड़की की खूबसूरती को दुनिया के हर खूबसूरत चीजों के साथ उसकी तुलना करी गई है। और तो और, जितनी इनोसेंस मनीषा कोइराला के चेहरे पे आपको दिखती है, उतनी ही इनोसेंस कुमार सानू ने अपने आवाज में दर्शाया है। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को।

श्रोताओं, 90s में म्यूजिकल डुओ जतिन ललित ने कई सारे सुपरहिट गाने दिए हैं और उनमें से एक फिल्म है कुछ कुछ होता है जो रिलीज हुई थी 1998 में। और इस फिल्म के टाइटल ट्रैक में एक नहीं बल्कि तीन तीन आइकॉनिक जोड़ियां हैं। म्यूजिकल डायरेक्टर्स जतिन ललित, काजोल शाहरुख की सुपरहिट जोड़ी और संगीतकार सुपरहिट जोड़ी उदित नारायण और अलका याग्निक की। तो आइए सुनते हैं इस गीत को, कुछ कुछ होता है।

श्रोताओं, हम बात कर रहे हैं 90s के सुपरहिट रोमांटिक गीतों की, और ऐसे में 90 के दशक में रिलीज हुई सबसे सक्सेसफुल रोमांटिक फिल्म आशिकी को हम कैसे पीछे छोड़ सकते हैं। इस फिल्म के रिलीज होते ही राहुल रॉय और अनुप अग्रवाल रातों रात सुपरस्टार बन गए थे।

0: संगीत,
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात,
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव सिपा सिसपसी चम सी मीटर होपा जिस भा किलो हस में मुचलांग खामताई खामती होको मा हो मनाई वन त्रांगना लानी पी दई सोंग हेंग पा साउ तो इंगना जी पी मे सोंग हेंग साउ हो नुन मे नई सिपेट वन नम हो वती कुन सिंग कुन मंग तंगलाई मो सोप नम खाम मनाई हे नई थोम खा ता मनाई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लोक मंग स्वीडन ऑक्सी कले मंग नॉर्वे सु हो मिस्टर मोदी सोशल मीडिया माध्यम सी वा तंग मंग स्वीडन अमु लोंका तंग होम सी ले नई तियंग सु कुचत कुना मनवा लोंग कनबा इनोवेशन पार्टनरशिप सोंगचम वा लोम खनसम इंडिया स्वीडन टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर ने खाउ मई लोंग हा तंग होम औ खनता ने नई तिपई पिन सु नम हो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह वन मनई मान रायपुर मई न सिपा नेक्स्ट जेन डाइल लुंग लुंग सोंग लु लियांग वु अलान सी तक पुत हो हमा का चीफ मिनिस्टर विष्णु देव साई स्टेट असेंबली स्पीकर रमन सिंह खनसम डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा तंगलोंग तंगबंग खौ नंगकनमा डाइल लुंग लुंग सोंग सर्विस नई न सिपहो चीला छत्तीसगढ़ मई तक पुत हो का तंगमन स्टेट गवर्नमेंट खौ चौ लोक सिपहो औ खन सी औ थेंग साम सिप साम कन यौ नम हो तक्तांग साउ हो हा मीटिंग अन सेंट्रल जोनल काउंसिल नई वन महोक जगदलपुर मई तिहेट न चेयरमैनशिप ऑफ द यूनियन होम मिनिस्टर मई चीफ मिनिस्टर अनमंग छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश खनसम उत्तराखंड तंगलोंग तंगमंग मीटिंग मई खाउ नंगकनमा सोंग यांग कनबा औ खनता न इंटर रीजनल तंगकोप इंडिया हैंडरूम सेक्टर लोक फ्यूजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मध्यम इरी सिल्क तंग राजस्थान आइकॉनिक कोटा दोरिया फैब्रिक सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर संजय जाजू वन मंगा तंगकोप कोटा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पीयूष समारिया खनसम एम डी NEHSDC मारा कोचो होमसी खैथुन कॉमन फैसिलिटी सेंटर कोटा मई कखौ कनमा कुन य नै खौ तंगकुन लोकल वेबर आर्टिसियन खनसम फैशन डिजाइनर तो नासी तानमुन कनमा नम हो नम खाम नीट पेपर लीक केस नई लोकमान लतूर औसी थिंग नंदित महाराष्ट्र कन्या पोमे लोकहन आलंग मई सियाव कन्मा कॉप सु क्वेश्चन पेपर नु मान गन साम लाख मई चा हंग लोक सावमन चौ सीबीआई खाउ थाम खाम कनसु नम हो तक्तांग कौहा एडिशन स्टेट लेवल हंगपन दादा मेमोरियल ट्रॉफी अन फुटबॉल खनसम वॉलीबॉल न सिप हो पी लखा पसाव फमाव लोकू पा कुना मंग अरुणाचल प्रदेश तक तो लीन कनसुम न सिप सॉन्ग वॉलीबॉल सिप हा फुटबॉल लीग खनसम पेट हा लीग चा पसाव ने खौ तीय तो लीन नम हो Spearhead Division No Aegis of Spear Corps Mai Hang Chitwan Self Defense Training Camp An Nung Tak Tang Ma Cha Hang Lakha On Son Lek Hu Tan Nia Ti Mechuka Valley School Mai Training Camp Mai Chau An Sama Long Indian Army

श्रोताओं, आप सुन रहे थे ताई खामती श्रोताओं का कार्यक्रम। आप इनके कार्यक्रमों को आगे भी सुन पाएंगे आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओं, आप हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 MHz पर।

आयुष श्रोता, अब आपको बॉलीवुड लेटेस्ट गॉसिप सुनाते हैं कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स में। सलमान खान की आने वाली अगली सुपर हीरो फिल्म द लास्ट हीरो रिलीज होने वाली है दिसंबर 2027 में। द फैमिली मैन, फर्जी और सिटाडेल हनी बनी जैसे सुपरहिट शोज देने के बाद अब राज एंड डीके भारत के सबसे बड़े सुपरस्टार सलमान खान के साथ काम करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जब से सलमान खान और राज एंड डीके के सुपर हीरो फिल्म के लिए साथ आने का ऐलान हुआ है, ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के सबसे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स में से एक बन गया है। इस खबर ने पहले ही सबका ध्यान खींचा हुआ है और अब एक और दिलचस्प अपडेट सामने आई है। मशहूर विजुअल इफेक्ट्स कंपनी वीटा एफएक्स इस फिल्म का वीएफएक्स संभालेंगे। फिल्म का पोस्टर और इसका नाम सामने आ गया है। राजू एंड डीके की फेमस जोड़ी जो है फिल्म को एवेंजर्स जैसा बनाने के लिए हर कोशिश में जुट गई है, क्योंकि ये स्टूडियोज जो है वीएफएक्स स्टूडियोज, ये द एवेंजर्स, द बैटमैन, द लास्ट ऑफ अस और मून नाइट जैसे ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में अपने बेहतरीन काम के लिए जाना जाता है, जिससे ये साफ हो गया है कि द लास्ट हीरो फिल्म का विजुअल स्केल बहुत बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसके मेकर्स बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं और उनका पूरा ध्यान इससे ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचाने पर है। कुछ रिपोर्ट्स की माने तो करीना कपूर खान इस सुपर हीरो फिल्म में सलमान खान की हीरोइन बन सकती है। हालांकि करीना ने अभी एक तक औपचारिक रूप से फिल्म पर साइन नहीं किया है, लेकिन उन्हें अपने रोल के लिए एक्साइटेड देखा गया है, तो वो इस फिल्म में आ सकती है।

रणवीर सिंह धुरंधर 1 और 2 के बाद अब अपनी अगली फिल्म प्रलय के काम में शुरू लग गए हैं काम में लग गए हैं जिससे खुद ही वो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। साथ ही जय मेहता फिल्म के डायरेक्टर होंगे और कल्याणी प्रियदर्शन इस फिल्म में लीड रोल के तौर पर नजर आएंगी। श्रोताओं, कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट में आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों को। सबसे पहले आप सुनेंगे सलमान खान पर फिल्माया ये गीत।

श्रोताओ, आप सुन रहे थे वांछो श्रोताओं का कार्यक्रम। अगर आप इनकी आगे के कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन करिए आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर। और श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए श्रोताओ, अब आपका मनोरंजन करवाते हैं हम कुछ हिंदी फिल्मी गीतों के साथ हमारे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स में।

किसी ने बहुत खूब कहा है, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता, इश्क है या इबादत अब कुछ समझ नहीं आता, एक खूबसूरत ख्याल हो तुम जो दिल से नहीं जाता। तो ऐसी ही एक डेस्परेट लवर की कहानी सुनते हैं इस गीत में।

100 अंधेरों में भी रोशन हो, उस हकीकत की तलाश। श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे ईद उमेश श्रोताओं का कार्यक्रम। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

ये कार्यक्रम जारी रहेगा। आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज पर आप इस चैनल पर ट्यून इन करके इनके आगे के कार्यक्रमों को सुन पाएंगे। अश्वता, आप हमें सुन रहे हैं अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोताओं, पहले प्यार की बात ही कुछ और होती है। अपने प्रेमी या प्रेमिका के हर एक बातों को हम बहुत गौर से सुनते हैं, उनके हर अंदाज को हम रोमांटिसाइज करते रहते हैं, चांद तारों से जोड़ते हैं, नजारों से जोड़ते रहते हैं। तो आइए श्रोताओं, आपको फिर से अपने पहले प्यार का एहसास कराते हैं इस गीत के साथ।

तो आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी सॉन्ग्स और अब से थोड़ी देर में आप सुन पाएंगे तानसा श्वेताओं का कार्यक्रम और उसी के साथ ही समाप्त हो जाता है हमारा आज का सेकंड ट्रांसमिशन। पर आप कहीं जाइएगा नहीं क्योंकि अभी तीसरे ट्रांसमिशन के ढेर सारे कार्यक्रमों के आपके साथ जुड़ेंगे आरजे मंजू। तो श्रोताओं आप बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए अरुण FM 103.1 MHz पर।

नमस्कार श्रोता, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से तानसा डायलेक्ट न्यूज। थैंक यू सो मच सुम्पी जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये शाम बहुत ही खूबसूरत बीते। नमस्कार श्रोता, इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 4:26 हो रहे हैं और इसी के साथ ही शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा।

0: कहते हैं विनर्स आर नॉट पीपल हु नेवर फेल बट पीपल हु नेवर क्विट। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि विजेता वे नहीं जो कभी हार नहीं मानते, बल्कि वे हैं विजेता वे नहीं जो कभी हारते नहीं हैं, बल्कि वो हैं जो कभी हार मानते ही नहीं हैं। जी हाँ दोस्तों, मुश्किलें जिंदगी में बहुत आएंगी, पर बात यह है कि आप उसे कैसे हल करते हैं। और आप अगर अपने आप में हार नहीं मानने का जज्बा रखते हैं तो आप विनर ही हैं। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार श्रोता इस वक्त 4:27 हो रहे हैं। और ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद हैं प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता तिमतिम, और मैं हूं आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो। चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं हमारे पहले सेगमेंट का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: Good evening, Itanagar.

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में, जो कि भरा हुआ है ज्ञान एवं मनोरंजन से। जी हाँ, हमेशा की तरह मजेदार गीतों के साथ हाजिर हूँ ही, और साथ ही साथ श्रोता कुछ आज बहुत जरूरी और हेल्दी हेल्दी बातें भी करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इस तरह से। मिलेट का खाना सेहत का खजाना, ताकत बढ़ाए शरीर को सजाए, हर दिन इसे जो अपनाए स्वस्थ जीवन की राह वो पाए। मिलेट है पोषण का अनमोल दान, सेहतमंद रखे तन और प्राण, जंक फूड को थोड़ा दूर भगाओ, मिलेट को अपनी थाली में सजाओ। जी हाँ दोस्तों, आजकल हेल्थ और अपने खाने को लेकर हर कोई बहुत ही कॉन्शियस हो गया है, तो ऐसे में दोस्तों आप या मैं पीछे नहीं रह सकते हैं। और इसके लिए दोस्तों आजकल देखा गया है कि सभी मैक्सिमम लोग मिलेट अपना रहे हैं अपने खाने में। तो मिलेट में ऐसे क्या

क्या गुण हैं जिसकी वजह से आजकल सभी लोग इसे अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं, इस बारे में बातें करेंगे आज हम इस कार्यक्रम के दौरान। दोस्तों, मिलेट में अधिक पोषण तत्व पाए जाते हैं। ये फाइबर से भरपूर होता है जिसे पचाना आसान रहता है। मिलेट ब्लड शुगर नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह वजन भी नियंत्रित रखने में बहुत ही सहायक होता है। इनमें आयरन और कैल्शियम अधिक होता है जो शरीर को मजबूत बनाता है। मिलेट हमारे हृदय स्वास्थ्य के लिए भी काफी लाभदायक है। बताऊंगी आपको और भी मिलेट के बारे में क्यों है ये हमारे सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस गीत का, कोड नेम तिरंगा फिल्म से।

तो दोस्तों, आपने आनंद लिया इस गीत का कोड नेम तिरंगा फिल्म से। आज हम बातें कर रहे हैं मिलेट्स के बारे में। जी हाँ, बाजरा, ज्वार और रागी का मान मिलेट बढ़ाए इसकी शान, ताकत पोषण सब इसमें समाये, हर घर में अब मिलेट आए। दोस्तों, मिलेट हमारे लिए बहुत ही सेहतमंद है और इसी के बारे में आज हम बात कर रहे हैं। ये ग्लूटेन फ्री होते हैं। मिलेट लंबे समय तक पेट भरा महसूस कराते हैं। इन्हें उगाने में कम पानी की आवश्यकता होती है। ये सूखे और कठिन मौसम में भी आसानी से उग जाते हैं। मिलेट रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। यह प्राकृतिक और कम प्रोसेस्ड भोजन माने जाते हैं। मिलेट पर्यावरण के अनुकूल फसल है। ये ग्रामीण किसानों के लिए लाभकारी फल

0: मानी जाती है। मिलेट शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करते हैं। और दोस्तों, जब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो भारत के अन्य हिस्सों के अलावा दोस्तों, हमारे नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व भारत में मिलेट प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि यह पहाड़ी क्षेत्रों में आसानी से उगाया जा सकता है और इसमें कम पानी की आवश्यकता होती है। उत्तर पूर्व के लगभग सभी राज्यों में किसी न किसी प्रकार के मिलेट की खेती की जाती है, जैसे कि असम मिलेट उत्पादन में अग्रणी राज्यों में से एक है। मेघालय रागी यानी कि फिंगर मिलेट और अन्य मिलेट की खेती के लिए फेमस है। नागालैंड पारंपरिक रूप से जनजातीय समुदाय द्वारा खेती की जाती है इसमें मिलेट की। अरुणाचल प्रदेश में कई पहाड़ी जिलों में मिलेट उगाया जा रहा है और इसकी प्रोडक्शन पहले से काफी बढ़ गई है। मणिपुर और मिजोरम में भी इसकी खेती की जाती है और फिर त्रिपुरा और सिक्किम धीरे धीरे मिलेट खेती को बढ़ावा यहाँ पे दिया जा रहा है। उत्तर पूर्व भारत में मुख्य रूप से रागी, बाजरा, फॉक्सटेल मिलेट और फिर बनयार्ड मिलेट आदि ये सभी उगाए जाते हैं। मिलेट कम पानी में उगते हैं और पोषण से भरपूर होता है और बदलती जलवायु के अनुसार अनुकूल फसल भी माने जाते हैं इस मिलेट को। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी कुछ आज सुना है इस कार्यक्रम के माध्यम से, उम्मीद करती हूँ कि कुछ तो फायदा हुआ होगा। अगर आपने मिलेट अपने डाइट में शामिल नहीं किया है तो प्लीज जरूर कीजिए। ये सिर्फ बड़ों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, जिसे हमने लिया है सुपरहिट मूवी RRR से।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Pace Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: A positive mind creates a positive life. सकारात्मक सोच एक सकारात्मक जीवन बनाती है, इसीलिए अच्छा सोचिए, अच्छा जरूर होगा। श्रोता, इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। कुछ ही पलों में आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर के।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे। श्री मोदी आज शाम प्रधानमंत्री योनस गहर स्टूर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, स्वीडन यात्रा से आपसी संबंधों को नई गति मिली। दोनों देश अगले 5 वर्षों में व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर हेड डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश स्थित मेचुकावेल स्कूल में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए 1 हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर सम्पन्न। नौवे राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से भाग ले रहे टीमों के बीच रोमांचक खेले मुकाबले। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग स्थित वांगहू गांव के 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर और लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में 400 आपातकालीन वाहनों को रवाना किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे के ओस्लो पहुंचे, जहां उनका ओस्लो के पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। श्री मोदी नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गहर स्टूर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि दौरा नॉर्डिक देशों के साथ भारत के संबंधों को गति प्रदान करेगा।
2: आज प्रधानमंत्री नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम और रानी सोनिया से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनास गार स्टोरर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। कल प्रधानमंत्री तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। वर्तमान में भारत और 5 नॉर्डिक देशों के बीच व्यापार का मूल्य $19 अरब है। व्यापार के प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार, रक्षा, आर्कटिक और जनसंपर्क जैसे कई क्षेत्र शामिल हैं। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये यात्रा महत्वपूर्ण रही। संयुक्त नवाचार साझेदारी के दूसरे चरण और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी तथा AI गलियारे की शुरूआत करने से लेकर अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने, तय करने और चर्चाएं अत्यंत सार्थक रही। उन्होंने स्वीडन की जनता, सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन का उन्हें स्नेह और मित्रता के लिए आभार व्यक्त किया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक पहुंचाने का ये कदम भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना द्वारा निर्देशित है।
3: इस यात्रा के दौरान 6 प्रमुख उपलब्धियां सामने आईं। पहली उपलब्धि रही भारत स्वीडन संयुक्त कार्य योजना 2026-2030 को अपनाना, जो व्यापार, नवाचार, जलवायु कार्रवाई, रक्षा और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में सहयोग के लिए एक व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है। दूसरी बड़ी उपलब्धि रही तकनीकी सहयोग को नई ऊंचाई तक पहुंचाना। इसके तहत ज्वाइंट इनोवेशन पार्टनरशिप 2.0 की शुरुआत की गई और स्वीडन इंडिया टेक्नोलॉजी AI कॉरिडोर यानी CTAC का विस्तार किया गया। तीसरी उपलब्धि रही एक वर्चुअल भारत स्वीडन संयुक्त विज्ञान एवं प्रौद्योगिक केंद्र स्थापित करने पर सहमति। ये केंद्र AI, 6G, क्वांटम कंप्यूटिंग और जीवन विज्ञान जैसे अत्याधुनिक क्षेत्रों पर कार्य करेगा। चौथी बड़ी उपलब्धि अगले 5 वर्षों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय करना रही। पांचवी उपलब्धि रही भारत स्वीडन SME और स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का विकास। छठी महत्वपूर्ण उपलब्धि साझा सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत को नई पहचान देना रही। इसके तहत टैगोर स्वीडन लेक्चर सीरीज की शुरुआत की गई, जो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की वर्ष 1926 की ऐतिहासिक स्वीडन यात्रा की शताब्दी को समर्पित है। इन पहलों के अलावा दोनों देशों ने लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिट यानी LEADIT के तीसरे चरण की घोषणा करी। साक्षी सिंह, आकाश।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत निवेश, नवाचार और विनिर्माण के लिए विश्व का सबसे आकर्षक केंद्र बन गया है। श्री मोदी ने स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान गोथेनबर्ग में यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले 12 वर्ष से सुधार, प्रदर्शन और परिवर्तन के मूल मंत्र पर काम कर रही है। श्री मोदी ने स्वीडन कंपनियों में विनिर्माण, हरित हाइड्रोजन मिशन, स्वच्छ ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपस्थिति बनाने का आग्रह भी किया। स्पेयर कोर के तत्वाधान में स्पेयर डिवीजन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के शियोमी जिले स्थित मेचुका वैली स्कूल में कक्षा 6 और उससे ऊपर के छात्रों के लिए एक हफ्ते तक चला आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर संपन्न हुआ, जिसका संचालन भारतीय सेना के योग्य प्रशिक्षकों द्वारा किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य छात्रों के बीच शारीरिक फिटनेस, अनुशासन और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना था। प्रतियोगियों में आत्मरक्षा की बुनियादी तकनीकों, परिस्थितियों के प्रति सजगता और आत्मविश्वास बढ़ाने वाली गतिविधियों का प्रशिक्षण प्रदान किया गया, जिनका लक्ष्य उनकी सहन शक्ति और जीवन के लिए लक्ष्य आवश्यक कौशल को निखारना है। इस पहल में छात्रों और शिक्षकों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और स्थानीय समुदाय ने भी इसकी भरपूर सराहना की। व्यवहारिक कौशल सिखाने के साथ साथ इस शिविर का उद्देश्य युवाओं को नेतृत्व, जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण में देश के प्रति प्रेरणा देना था। नौवे राज्य स्तरीय हंगपंग दादा मेमोरियल ट्रॉफी के दूसरे दिन फुटबॉल और वॉलीबॉल अंडर 16 बॉयज एंड गर्ल्स के लिए अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों में भाग ले रहे टीमों के बीच रोमांचक खेल मुकाबले और जबरदस्ता देखा गया। वॉलीबॉल मुकाबले रविवार को शियोम आर्मी ग्राउंड के आधिकारिक तौर पर शुरू हुए, जिनमें कुल 12 वॉलीबॉल मैच सफलतापूर्वक आयोजित हुए। इसके साथ ही फुटबॉल मुकाबले खेले गए, जिसमें बॉयज के 10 लीग मैच और गर्ल्स के 8 लीग मैच खेले गए। अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग स्थित वांगहू गांव में 5 दिवसीय पीक पोटेंशियल एडवेंचर एवं लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया, जिसका उद्देश्य युवा छात्रों में नेतृत्व के गुण, अनुशासन, साहसिक भावना और आत्मविश्वास को बढ़ावा देना है। डॉ. अंशु जमसेनपा द्वारा आयोजित इस पहल का मुख्य जोर जीवन को बदलने वाली ऐसी प्रशिक्षण पर है, जो छात्रों को अपनी असली क्षमता पहचानने में मदद करती है। साथ ही ये ट्रेनिंग उनमें भविष्य की चुनौतियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने के लिए भी जरूरी साहस और दृढ़ संकल्प भी विकसित करती है। पश्चिम बंगाल सरकार मंत्रिमंडल ने राज्य सरकार, विभिन्न सरकारी बोर्डों, निगमों और अन्य राज्य सहायता प्राप्त निकायों तथा स्कूलों के कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग के गठन को सैद्धांतिक मंजूरी दी है। एक महत्वपूर्ण निर्णय में मंत्रिमंडल ने आज राज्य सरकार के सूचना और सांस्कृतिक मामलों के विभाग तथा अल्पसंख्यक और मदरसा विभाग के तहत 1 जून से विभिन्न प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के रोकने की भी संवैधानिक मंजूरी दे दी है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज रायपुर में 112 नंबर वाली आपातकालीन सेवाओं के लिए 400 नए अत्याधुनिक वाहनों को रवाना किया। छत्तीसगढ़ में पहले यह सुविधा 16 जिलों में थी, अब ये 33 जिलों में उपलब्ध है। 400 नए अत्याधुनिक आपातकालीन वाहन, 33 विशेष निगरानी गहन तथा 60 नए राजमार्ग कश्ती वाहन प्रदेश के विभिन्न जिलों से रवाना किए गए।
4: आपातकालीन सेवा डायल 112 अभी तक छत्तीसगढ़ के सिर्फ 16 जिलों में उपलब्ध थी, लेकिन अब राज्य सरकार ने इस सेवा का विस्तार सभी 33 जिलों में कर दिया है। सुरक्षा मानकों और सहायता क्षमता को और मजबूत करने के लिए डायल 112 सेवा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्थान पहचान तकनीक को जोड़ा गया है, जिससे संकट में फंसे व्यक्ति की वास्तविक भौगोलिक स्थिति का सटीक पता लगाया जा सके। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस व्यवस्था में पैनिक बटन और विशेष निगरानी सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं। विकल्प शुक्ला।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि वैश्विक चुनौतियों और अनिश्चितताओं के बावजूद भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आज नई दिल्ली में भारत व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च करते हुए श्री गोयल ने कहा है कि आगे बढ़ने का उत्साह कभी कम नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भारत के उद्योगों, व्यापारिक समुदाय और लोगों में हौसला इतना मजबूत है कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को रोक नहीं सकती।
5: विकसित भारत 2047 जो प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रोत्साहित किया है अमृत काल में मेहनत करने के लिए, वो लक्ष्य बड़ा है, पर भारत के उद्योग व्यापार जगत, भारत के लोगों में जो आज उत्साह है और सफलता के लिए जिस प्रकार से पूरा देश 140 करोड़ लोग एकत्र हुए हैं, मुझे लगता है कि कोई ताकत दुनिया की ना हमें रोक पाएगी ना हमारे को थम पाएगी।
1: IPL क्रिकेट में आज हैदराबाद में चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। यह मैच शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय कर्नाटक, केरल और माहे में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 7 जिलों तवांग, कुरुंगकुमे, क्रादादी, शियोमी, दिवांग वैली, अंजाव और चांगलांग को छोड़ अन्य सभी जिलों के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मणिपुर में राष्ट्रीय राजमार्गों पर जारी अवरोध और अंतर जिला राजमार्गों तथा आर्थिक अवरोध ने अर्थव्यवस्था और जीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर अवरोध के कारण सेनापति जिले में टैंकरों और यात्री वाहनों सहित सैकड़ों मालवाहक ट्रक फंसे हुए हैं और इम्फाल नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: This is Akashvani, the news read by Narang Koyang. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Oslo, Norway, as part of his multi-nation tour. This visit includes bilateral talks between India and Norway and also the third India-Nordic summit. This visit will give impetus to India's relations with the Nordic countries. Defense Minister Rajnath Singh departed on a two-nation visit to Vietnam and South Korea today. In a social media post, the minister said that he is looking forward to visiting the two nations to further expand the scope of bilateral engagement. He said the focus will be on a deepening strategic military cooperation, strengthening defense industrial partnerships, boosting maritime collaboration, and promoting peace and stability in the Indo-Pacific region. During his visit to Vietnam, Rajnath Singh will hold bilateral talks with the Minister of National Defense of Vietnam, General Phan Van Giang. Congress leader V.D. Satishan was sworn in as the new Chief Minister of Kerala today at a grand ceremony held at the Central Stadium in Thiruvananthapuram this morning. Governor Rajendra Vishwanath Arlekar administered the oath of office and secrecy to Mr. Satishan. A 21-member cabinet took office alongside the chief minister. 16 members in the new ministry are becoming ministers for the first time. The Congress Party has 11 representatives in the new cabinet. The Indian Union Muslim League has 5 ministers. Immediately following the swearing-in ceremony, the newly formed government convened its first official cabinet meeting today. The cabinet of the government of West Bengal has given in the principal approval to the formation of the 7-pay commission for the employees of the government of West Bengal, various government boards, corporation and other state-aided bodies. In a significant decision, the cabinet today also gave in principal approval to stop various direct benefit transfers from 1st June under the Information and Cultural Affairs Department and Minority and Madrasa Department of the state government. The scholarship schemes will continue under these departments. The state government also gave approval for the free transport facility for short and long distance for the women of the state. The Annapurna scheme will be introduced from the 1st June for the women of the state, under which 3,000 rupees will be transferred under the direct benefit transfer. The OBC list for Bengal will be prepared afresh by the state government following the recent judgment of the Calcutta High Court. Chief Minister Suvendu Adhikari chaired a cabinet today at the State Secretariat, Navadna. In Uttar Pradesh, the Yogi Adityanath cabinet today approved the constitution of an OBC commission. The commission's recommendations are a Supreme Court prerequisite for implementing backward class quotas in panchayat elections. The cabinet under the leadership of the Chief Minister Yogi Adityanath today also cleared metro expansions in Agra and Lucknow, a 2,799 crore rupees power grid upgrade in Mirzapur and 855 crore rupees hospital complex at RML. The Election Commission has announced the schedule for the biennial elections to 16 seats of the Maharashtra Legislative Council. According to the Commission, the notification will be issued on the 25th of this month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the 22nd of June. The Model Code of Conduct has come into force with immediate effect in the concerned constituencies. Union Home Minister and Corporation Minister Amit Shah today flagged off a fleet of state of the odd dial 112, emergency response vehicles and modern forensic mobile vans at a state-level function held in Raipur. Chief Minister Vishnu Deo Sai, Deputy Chief Minister Vijay Sharma and Chhattisgarh Assembly Speaker Raman Singh were also present on the occasion. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India is progressing rapidly despite global challenges and uncertainties. Launching the website of Bharat Vyapar Mahotsav in New Delhi today, Mr. Goyal emphasized that the enthusiasm to move forward should never diminish and everyone must continue working tirelessly. Indian Railways has said that a detailed inquiry is underway to ascertain the cause of the fire that broke out in one of the passenger coaches at Sasaram Railway Station in Bihar. According to East Central Railways, the incident occurred at around 5:30 a.m. when smoke was detected from one of the coaches of the Sasaram Patna passenger train, which was standing on the platform. That's all in this news bulletin. Namaskar.
7: अभी आप सुन रहे थे हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। श्रोता लीजिए अब प्रस्तुत है नोक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम।
8: अब आकाशवाणी ईटानगर दिव्यगर व नोक्ते प्रोग्राम अथुरंगजा था वन बंगा सनपो दंग नोक्ति को बोचो तटकत थजा हुम्बा चा ची वानी सत तारीख मेजंग खोबोचो को दीपा किम किम तेसिया। Prime Minister Narendra Modi atengi ni Sweden visit di ko Norway nang visit honka. Prime Minister may social media post kong eka Sweden nang visit pa important outcome dam nang nyarang successfully dangwa. Te mang eka arawani ni country ma hane relation pa strategic partnership to ko elevate honka aradam ko joint innovation partnership 2.0 niya India Sweden technology and artificial technology corridor min launch honka. वानिनी कंट्रीज माहू रापा बंगा को बायलेटरल ट्रेड पा डबल होन रंग एम होन का प्राइम मिनिस्टर मा अरे डिस्कशन पाया रंग प्रोडक्टिव तंग वांगा मत हो कोई ही प्राइम मिनिस्टर मोदी मा स्वेदन विन्या निया स्वेदन गवर्नमेंट दिको प्राइम मिनिस्टर अल्फ क्रिस्टेसन हने वार्म वेलकम दिको फ्रेंडशिप था रंग दंग को आई का यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मथजा रायपुर नंग चावली नेक्स्ट जेन डायल 112 व्हीकल पा फ्लैग ऑफ होन का Our occasion ko Chief Minister Vishnu Deo Sai, State Assembly Speaker Raman Singh, Diko Deputy Chief Minister Vijay Sharma min present dangwa. Ahe tu to ko Chhattisgarh wa Chivanerok District nang dial 112 service available dangwa. Hama he tu state government ma ara service ba bora lama apang Ruk Ramwaram District nang expand honka. Ninab Jangdalpur nang Central Journal Council 26 meeting organize hon min. अर चेयरमैनशिप पा यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह मोहनमिन अर मीटिंग को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश निया उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर हेमिन पार्टिसिपेट होनमिन इंडिया हैंडलूम सेक्टर नंग इंटर रीजनल कोलाबरेशन पा प्रमोट होन रंग वहां द इम्पोर्टेंट स्टेप कप का अर इनिशिएटिव एम पा नॉट इज फेमस ईरी सिल्क पा राजस्थान आइकोनिक कोता दोरिया फेब्रिक तम नंग कम्बाइन होनमिन मजा मिनिस्टर ऑफ डोनर सेक्रेटरी संजय जाजूमा कोता गेट हन कॉमन फैसिलिटी सेंटर नंग विजिट हुनवा हनी दम नंग कोता डिस्ट्रिक्ट कलेक्शंस पीयूष समारियानिया एनईएचएचडीसी एमडी मारा कोचोमिन प्रेजेंट नंगवा डेलीगेशन मा लोकल वेवर्स आर्टिशियन निया फैशन डिजाइनर हे दम नंग इंटरेक्ट हुनवा दिको ट्रेडिशनल वेवर टेक्निक पा क्लोजली ऑब्जर्व हुनका विजिट पुट को डिस्कशन होन का ईरी सिल्क पी सिल्क पा कोता डोरिया दमनंग इंटीग्रेट होन लमा हाई वैल्यू फैब्रिक डेवलप होन रंग फोकस होन का अर फैब्रिक पा लग्जरी कंफर्ट ड्यूरेबिलिटी दिको ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप कॉम्बिनेशन दंग मिन नीट पेपर लीक केस पा महाराष्ट्र लातूर पमा नंदित तो को पहुंची का रिपोर्ट जिनको वांत पेरेंट्स मा अते चारंग लीक क्वेश्चन पेपर पा 5 लाख लाख बंगा गुन में रीकांगा मा आरोप लोगी का सीबीआई टीम मा मजा अरमी न्यनंग पूछताछ होन वा दिको फर्दर इन्वेस्टिगेशन रंग तेनंग ने ना पुणे ऑफिस नंग प्रेजेंट दंग रंगे का अर केस को दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट मा पुणे एक्यूज मनीषा मंधारे नंग 14 डेज रंग सीबीआई कस्टडी नंग भेजी का एजेंसी जिनको मनीषा मंधारे पा नीट बायोलॉजी पेपर लीक को मेन कंस्पिरेटर डंगवा 9 edition state level Hangpin Dada Memorial Trophy for football and volleyball U16 boys and girls second day panya rang exciting dangwa Arunachal Pradesh wa ahan ahan district wa hura team wa nyarang josh tamnang participate honwa diko match pa among san dangwa football even officially pa maja Siom army ground nang shuru dangwa Ako total chiwan ni volleyball match pa successfully conduct honwa. Aradam ko football competition min continue dangwa. Ako purangi ko ichi boys match diko isat girls match loonwa. Spare Corps kondang super head division ma Mijuka Valley School na class 6 pa ma senior students herang self-defense training camp conduct honka. Ara training camp pa India Army he ngama honka. Our main aim pa students say nang physical fitness discipline diko self defense awareness pa promote hon rang hon ka our initiative ko students niya faculty members he nya rang enthusiasm dam nang participate hon wa diko local community he mamen nya rang tarif hon ka practical skill he tho dam ko our aim pa youth he nang leadership responsibility diko nation building nang motivate hon rang min hon ka Prime Minister Narendra Modi ate multi-nation tour ko Norway capital Oslo nang ponchi ka ate visit ko Indiania Norway tungnang bilateral talk dangmin aradam ko third Indian Nordic summit min organize one min. Ara visit ko Indiania Nordic countries relations pa jomin strong bo narang modot chomin. Prime Minister Narendra Modi ate Norway nang ate first official visit. Our visit ko clean and green technology tiko blue economic rangrang importance area ko nangmin focus honmin. Nena Prime Minister Third India Nordic Summit ko participate honmin. Recently lagu honta Trade and Economic Partnership Agreement pa soknoma our Summit member countries he damnang economic relation pa jomin majboot po narang important role play honmin. Te janang nokte khobot pa akujarat hon mangta. Aro Akashwani Itanagar Dibrugarh Vasese program Kabang ko Chahi Niyarab Chakam Hoa Va Ronyan Setat Mangan.

0: नमस्कार दोस्तों, नोक्ते डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पावो। तो चलिए मनोरंजन के सिलसिले को जारी रखते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव की ओर।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा। लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और पहला गीत आपने सुना ओम शांति ओम फिल्म से, और इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का टोटल धमाल फिल्म से।

0: दोस्तों, मैंने प्यार किया फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होता है। लेकिन आपको निराश होना नहीं है, क्योंकि मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जिसके लिए चलिए आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।
1: मॉडर्न डिजाइन, एडवांस टेक, एक्सप्लोर मारुति सुजुकी वैगनआर।

0: श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया कलंक फिल्म के गीत का, और इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम शाम की महफिल यहीं पर समाप्त होती है। लेकिन हाँ दोस्तों, मनोरंजन का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, गीत संगीत हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। कहते हैं जब आप अपने पसंदीदा गीतों को सुनते हैं तो काफी राहत मिलती है और सुकून मिलती है। ये भी कहा जाता है कि दर्द किसी भी तरह का हो, जब आप अपने पसंदीदा गीतों का आनंद लेते हैं दर्द से थोड़ी सी राहत जरूर मिलती है। बने रहे हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर और आनंद लेते रहिए एक से बढ़कर एक मजेदार गीतों का।
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

खलनायक फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि वक्त हो चला है आदि डायलेक्ट न्यूज का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से कुछ ही पलों में, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद।

ये आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित आदि डायलेक्ट न्यूज। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम आज के कलाकार में। आज हम बात करेंगे 90 के दशक के एक ऐसी अदाकारा के बारे में जिन्हें आप सभी आज भी बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, मजेदार गीत जरूर है आप सभी के लिए। चलिए बातें करते हैं 80 के दशक के हीरोइन पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। जब भी हिंदी सिनेमा की बात होती है तो 80 के दशक की कुछ एक्ट्रेसेस आज भी दर्शकों को याद आती हैं। उन्हीं में से एक है पद्मिनी कोल्हापुरे, जिसकी मुस्कान और आंखें हर किरदार में जान डाल देती थी। उस दौर में जब ज्यादातर एक्ट्रेसेस ग्लैमर और डांस पर निर्भर थी, तब पद्मिनी अपनी अदाकारी से लोगों के दिल जीत लेती थी। उनकी कड़ी मेहनत और एक्टिंग के लिए जुनून का ही नतीजा था कि महज 17 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म जगत में बड़ा मुकाम हासिल किया। इतनी कम उम्र में उन्होंने फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड जीतकर सबको हैरान कर दिया था। पद्मिनी कोल्हापुरे का जन्म 1 नवंबर 1965 को मुंबई के एक मराठी परिवार में हुआ था। उनके पिता जाने माने शास्त्रीय गायक और वीणा वादक थे। घर में संगीत का माहौल था, इसीलिए पद्मिनी भी शुरू से ही संगीत से जुड़ी रही। बचपन में ही उन्होंने गायकी की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। यही वजह थी कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई फिल्मों में कोरस सिंगर के रूप में गाने भी गाए। उन्होंने अपनी बहन शिवांगी कोल्हापुरे के साथ यादों की बारात और किताब जैसी फिल्मों में आवाज भी दी। पद्मिनी ने छोटी उम्र में फिल्मों की दुनिया में कदम रखा। महज 10 साल की उम्र में उन्होंने देवानंद की फिल्म इश्क इश्क इश्क में बतौर बाल कलाकार काम किया। इसके बाद वह सत्यम शिवम सुंदरम में नजर आए, जिसमें उन्होंने जीनत अमान के बचपन का रोल निभाया था। इस फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई और उन्हें बॉलीवुड में बड़े बैनर्स से ऑफर आने लगे। उन्होंने साफ इंसाफ का तराजू, थोड़ी सी बेवफाई और सजन बिना ससुराल जैसी फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट बेहतरीन काम किया। आगे और भी बताएंगे आपको पद्मिनी कोल्हापुरे के बारे में। फिलहाल ये बताना चाहूंगी कि प्रेम रोग की कहानी एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो शादी के अगले ही दिन विधवा हो गई थी और फिर समाज के कठोर नियमों से जूझती है। पद्मिनी ने इस किरदार में ऐसी सच्चाई और संवेदना दिखाई कि दर्शक भावुक हो उठे। फिल्म में उनके साथ ऋषि कपूर थे और दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। तो आइए इसी फिल्म से सुनते हैं, इस मजेदार गीत का आनंद लेते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

आपने आनंद लिया इस गीत का प्रेम रोग फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में। साल 1980 में आई फिल्म इंसाफ का तराजू ने उनके करियर यानी कि पद्मिनी कोल्हापुरे के करियर को नई दिशा दी। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग इतनी इम्प्रेसिव रही कि उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। धीरे धीरे वे एक चाइल्ड आर्टिस्ट से लीड हीरोइन की ओर बढ़ी। 1981 में राज कपूर ने उन्हें अपनी फिल्म प्रेम रोग में बतौर लीड एक्ट्रेस साइन किया और यह उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ। इस फिल्म के लिए पद्मिनी को बेस्ट एक्ट्रेस और फिल्म बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। उस समय उनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 17 साल की थी। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा सम्मान पाने वाली वह हिंदी सिनेमा की सबसे कम उम्र की एक्ट्रेस बन गई। प्रेम रोग की सफलता के बाद पद्मिनी 80 के दशक की सबसे व्यस्त एक्ट्रेसेस में शामिल हो गई। उन्होंने प्यार झुकता नहीं, विधवा, वो सात दिन, स्वर्ग से सुंदर और आहिस्ता आहिस्ता जैसी फिल्मों में एक से बढ़कर एक किरदार निभाए। मिथुन चक्रवर्ती, जितेंद्र, ऋषि कपूर और राजेश खन्ना जैसे बड़े सितारों के साथ भी उन्होंने काम किया और उनकी जोड़ी को खूब सराहाया गया।

श्रुता, अभी आपने आनंद लिया इस गीत का प्यार झुकता नहीं फिल्म से। साल 1986 में फिल्म ऐसा प्यार कहां के सेट पर काम करते हुए उन्हें फिल्म के निर्माता प्रदीप शर्मा से प्यार हो गया। जब परिवार ने इस रिश्ते को मंजूरी नहीं दी तो पद्मिनी ने साहस दिखाते हुए घर से भागकर शादी कर ली। शादी के बाद भी उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। दोनों का एक बेटा है प्रियांक शर्मा, जो अब खुद भी एक्टर है। पद्मिनी अपने सादगी और मर्यादित छवि के लिए जानी जाती है। उन्होंने कभी भी बोल्ड सीन नहीं किए, बावजूद इसके उनकी सभी फिल्में अच्छी रही। आज पद्मिनी कोल्हापुरे भले ही फिल्मों में कम दिखती है या कम दिखाई देती है, लेकिन सोशल मीडिया पर वो एक्टिव है। श्रोता, इसी के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि कार्यक्रम आज के कलाकार का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक, कुछ और मजेदार गीतों और एक और नए कलाकार के साथ। फिलहाल बताना चाहेंगे आपको कि अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित निशी डायरेक्ट न्यूज, और हम जुड़ेंगे आपके साथ एक बार फिर ठीक निशी डायरेक्ट न्यूज के बाद।

0: श्रोता, एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। अभी आप सुन रहे थे निशी डायलेक्ट न्यूज। आइए मनोरंजन के इस सिलसिले को जारी रखते हुए आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।
1: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVT.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions.

0: मुझसे
1: मिलो, अरे बिल्लो बोला बिल्लो,
0: जो भी देखे यही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई,

listen up, yo. It's Valentine's Day. Groove.

श्रोता, एक बार फिर से बताना चाहूंगी आपको कि आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम हिंदी फिल्मी गीतों का हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। कुछ देर पहले आपने आनंद लिया धन की फिल्म के गीत का और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को ट्यूबलाइट फिल्म से।

मेरे प्यारे दोस्तों, बता दो आपको कि आपने आनंद लिया इस गीत का रब ने बना दी जोड़ी फिल्म से। ठीक इसके बाद श्रोता, आप आनंद ले पाएंगे अगले गीत का फाइटर फिल्म से।

दोस्तों, दियर जिंदगी फिल्म के इसी गीत के साथ ही बताना चाहेंगे आपको कि हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। बता दूं ये भी आपको कि अब से बस कुछ ही पलों में आप आनंद ले पाएंगे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon-R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: Namaskar. अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ सुनने वाले सभी श्रोताओं का कार्यक्रम अपना गीत में हार्दिक स्वागत है और इस कार्यक्रम के सफर में मैं हूं आपके रेडियो साथी गैर अत। आज का अपना गीत कार्यक्रम की शुरुआत हम करते हैं सिंगपो गीत से। इस गीत को गाया है जमैका खासा ने।

अरुणाचल प्रदेश के कई जनजातियाँ जैसे नीशी, तागिन, अपतनिक, गालो आदि स्वयं को सृष्टि का पहला मानव अबोतानी के वंशज मानते हैं। उसी तरह हर समुदाय के लोगों की अपनी अपनी मान्यता है और सभी के स्रोत अलग अलग भी है, पर एक समानता है सभी जाति या समुदाय में, और वो है उनकी परंपरा या संस्कृति का स्रोत। जी हाँ, हम आज जो भी है और

कोकुन तिखक की आवाज में आप सुन रहे थे तांगसा गीत। हमारे श्रोता मित्र सुन रहे हैं कार्यक्रम अपना गीत, जो अब तक पहुंच रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। दोस्तों, बारिश के बहुत सारे अलग अलग साइड इफेक्ट्स है। जी हाँ, बारिश हर एक इंसान में अलग अलग फीलिंग्स पैदा करते हैं। जैसे जवानी बारिश में भीगना पसंद करते हैं, सूखे से बचने के लिए किसान बारिश के बूंदों को अमृत मानते हैं, मगर यही बारिश पहाड़ों में भूस्खलन पैदा कर हर तरह से लोगों को परेशान भी करती है। फिर वही बारिश में घर के अंदर बैठकर चाय की चुस्की लेना या फिर कंबल से लिपटकर सोने का भी एक अलग ही आनंद है। तो चलिए श्रोता, इसी बात पर क्यों ना हम बारिश पर एक गीत सुने। मोगेदो जी की आवाज में लीजिए पेश है एक आदि गीत।

आप सुन रहे थे नुक्ते गीत तावांग लोवांग की आवाज में। प्यार मोहब्बत में किसी के ओहदे, जात पात, रूप रंग नहीं देखा जाता, और अगर कहीं पर भी ये बीच में आ जाए तो समझ जाना कि वो सच्चा प्यार नहीं है। प्यार तो एक मीठा सा एहसास है जहाँ कुछ भी देखने और सुनने के लिए सिर्फ दिल की जरूरत होती है जो महसूस कर सके। कहते हैं ना कि कोई प्यार करे तो तुमसे करे, सिर्फ तुमसे, तुम्हें तुम्हारे ही रूप में प्यार करे, और अगर कोई तुम्हें बदल कर प्यार करता है तो वो प्यार नहीं सौदा है। श्रोता मित्रों, ये बात हमेशा याद रखना और हमेशा खुश रहना। चलिए अपना गीत कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं गालो गीत रेरिक कार्लो दिग्बाक और मार्तो कामदा की आवाज में।

श्रोताओं, इसी गालो गीत के साथ कार्यक्रम अपना गीत का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ हमारे कार्यक्रम श्रोता मित्रों को पसंद आए होंगे, और इसी उम्मीद के साथ लेती हूँ आप सभी श्रोताओं से विदा। सुनते रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz। नमस्कार।

श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे स्थानीय गीतों पर आधारित कार्यक्रम अपना गीत का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। बताना चाहेंगे श्रोता आपको कि अब समय हो गया है कुछ पाश्चात्य संगीतों का। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता, अभी आप आनंद ले रहे थे पाश्चात्य संगीतों पर आधारित कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। जी हाँ श्रोता, अरुण एफएम आपकी खिदमत में हाजिर रहती है सुबह के 5:48 से लेकर के रात्रि के 9:30 तक, हर तरह के नए पुराने गीतों के साथ, एक से बढ़कर एक गीतों के साथ। सिर्फ गीत ही नहीं, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों से भी रूबरू कराती है आपको अरुण एफएम हमेशा। तो इसी

श्रोता आप आनंद ले रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीतों का, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए सदाबहार पुराने हिंदी फिल्मी गीत। पहला गीत आपने सुना आंधी फिल्म से और इस वक्त हमने पेश किया है आपके लिए इस गीत को लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में अभिमान फिल्म से।

0: श्रोता, कश्मीर की कली फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिशरे गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता टिम के साथ मुझे, यानी कि आपकी दोस्त, आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधे लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। इन दिनों अगर आपके घर में जनगणना कर्मी आकर आपके मकान के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं तो घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनका सहयोग करें और पूरी जानकारी उन तक पहुंचाएं, क्योंकि देशव्यापी जनगणना 2027 के पहले चरण का काम तेजी से चल रहा है, जिसमें मकान सूचीकरण और मकानों की गणना की जा रही है। इस बार जनगणना कार्यों में पहली बार शुरू की गई है स्वगणना सुविधा, जिसे जनता से काफी उत्साहजनक रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। काफी राज्यों में स्वगणना का जो विकल्प है वो समाप्त हो चुका है और कुछ राज्य अभी बचे हैं। ये पहल जनगणना कार्यों के डिजिटलीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और इसे कैसे भरना होगा, किस तरह के सवाल इसमें पूछे जा रहे हैं, अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो तुरंत हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आज के कार्यक्रम में हम मकान सूचीकरण और आवास गणना पर परिचर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मैं हूं आपके साथ फरहत नाज, और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमने आमंत्रित किया है गृह मंत्रालय के महापंजीयक और गणना आयुक्त कार्यालय में उप महापंजीयक रुशाली वराड़ी जी को। नमस्कार रुशाली जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन।
1: नमस्कार और धन्यवाद।
0: श्रोताओं, हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप हमारे विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331 0481, 0112371717, 0112371706 और 0112341444 पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। नंबर एक बार फिर सुन लें, 9289094044 पर आप सवाल भेजते रहिए। सोशल मीडिया एक्स पर #AskAIR का इस्तेमाल करके भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और रुशाली जी, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ही है कि पहले चरण का काम तेजी से शुरू हो गया है, मकान सूचीकरण और मकानों की गणना किस तरह की जा रही है इसमें, और किस तरह के सवाल इसमें जनता के लिए चुने गए हैं?
1: जी, जैसे अभी आपने कहा कि इस बार पहली बार हम स्वगणना की उपलब्ध फैसिलिटी उपलब्ध है पब्लिक के लिए, तो काफी राज्यों में स्वगणना का पीरियड खत्म हो चुका है, जो कि हमने 15 दिन के लिए रखा था, और एक महीने का समय है जो कि प्रगणक घर घर जाके सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है। तो कुछ 7 या 8 स्टेट में हमारी स्वगणना कंप्लीट हो चुकी है और HLO का काम भी कंप्लीट हो चुका है। कुछ राज्यों में स्वगणना अभी चल रही है। तो क्वेश्चन के बारे में अगर हम कहें तो जैसे नाम है इस फेज का मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना, तो इसमें हम सिर्फ मकानों की गणना करेंगे और मकान की हालत कैसी है, घर कैसा है और घर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध है, जैसे पीने का पानी कहाँ से आता है, पीने का पानी कैसे है, टॉयलेट की सुविधा है या नहीं, बाथरूम की सुविधा है या नहीं, घर में कितने लोग रहते हैं, कितने कपल्स रहते हैं, रूम्स कितने हैं घर पे, और घर में एसेट्स क्या है, जैसे कि रेडियो।

0: वो है या नहीं, टेलीविजन है या नहीं, टू व्हीलर फोर व्हीलर है या नहीं, तो इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे।
1: जी वैशाली जी, और सबसे पहले हमारे लिसनर हमसे जुड़ गए हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। जी धर्मवीर जी
2: नमस्कार। मैडम
1: नमस्कार।
2: हाँ एक्सपर्ट को भी नमस्कार। मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मेरे सवाल में मैं ये पूछना चाहूंगा कि घर घर जाके आप इसके लिए इंक्वायरी करेंगे, जानकारी लेंगे, और कुछ घरों में जाने का मतलब ये है कि घरों में महिलाओं का होना, क्या जो आपके जाएंगे वर्कर तो उसमें एक महिला भी होगी साथ, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये, जो अगर कोई दिव्यांग है, दिव्यांग का मतलब ये है कि वो अगर उसके पास स्मार्टफोन नहीं है तो वो कैसे अपने, जो पहले आपने कहा था कि इसमें खुद भी ये दर्ज कर सकता है, और इसके लिए हमें क्या क्या, मैं कित अगर कोई फ्रॉड आ जाता है इंक्वायरी करने के लिए तो ऐसे में हम क्या पहचान करें कि ये आदमी फ्रॉड है कि ये सरकार के भेजा गया ये आपका वर्कर है। धन्यवाद।
1: धर्मवीर जी ने तीन सवाल पूछे हैं रुशाली जी। सबसे पहला सवाल उनका ये है कि अगर महिलाएं घर में मौजूद हैं तो क्या कोई महिला कर्मी भी जनगणना कर्मी के साथ मौजूद रहेंगी?
0: तो पहला जो क्वेश्चन है आपका, महिला अलग से तो नहीं होगी, क्योंकि हमारे जो प्रगणक होंगे वो जनरली होते हैं जो स्कूल के टीचर्स होते हैं या स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं। हम लोग इंस्ट्रक्शन जरूर देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इसमें अपॉइंट करें, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन एक फेथफुली अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट ये कंपलसरी नहीं है और हर घर में एक ही आदमी जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें पूरे इंडिया के लिए 31 लाख प्रगणकों की जरूरत है। तो इतने सारे लोगों के साथ मतलब और एक महिला जाना इट्स मतलब संभव नहीं है। लेकिन जो तीसरा सवाल है मैं इसी के साथ जोड़ देती हूँ, जो फ्रॉड वाली बात इन्होंने पूछी है धर्मवीर जी ने, तो फ्रॉड की कोई ये नहीं है, क्योंकि प्रगणक के पास अपना आई कार्ड होगा, उसके पास चार्ज ऑफिसर का सिग्नेचर होगा, उस पे स्टैंप होगा, प्लस क्यूआर कोड होगा आई कार्ड पे, और अपॉइंटमेंट लेटर पे भी क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। तो क्यूआर कोड स्कैन होने के बाद हमारी वेबसाइट उस पे आ जाएगी और वेबसाइट पे उसकी डिटेल्स आपको दिख जाएंगे, तो फ्रॉड की बिल्कुल दिक्कत नहीं है। हालांकि हो सकता है, लेकिन उसके लिए आप अपने चार्ज ऑफिसर को या लोकल ऑफिसर से बात कर सकते हैं।
1: दूसरा सवाल इन्होंने पूछा है कि दिव्यांग व्यक्ति फॉर्म कैसे भर सकते हैं?
0: जी, तो दिव्यांग व्यक्ति के लिए जैसे पहले ही बताया मैंने, स्वगणना एक अतिरिक्त फैसिलिटी हम दे रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है। प्रगणक हर घर जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, अगर आपने स्वगणना की है तो भी प्रगणक घर घर जाके फिर से वो वेरीफाई करेगा। तो अगर दिव्यांग कोई है वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, प्रगणक वहां पे जरूर जाएगा और इन्फॉर्मेशन लेके आएगा।
1: और अब हमारे दूसरे लिसनर हरियाणा से हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेंद्र जी। जी राजेंद्र जी
3: नमस्कार। जी जागृति जी को और विशेषज्ञ जी को नमस्कार।
1: नमस्कार, मैं फरहत नाज बात कर रही हूँ राजेंद्र जी,
3: सॉरी जी।
1: लेकिन मैं आपका नमस्कार जागृति जी को भी पहुँचा दूंगी।
3: जी जी, और मैं ये जानना चाहता है अगर कोई गलत जानकारी देता है या तो कोई उस पे कोई कार्रवाई होगी, या जैसे कोई नोटिस दिया जाएगा जनगणना के बारे में, मकान के बारे में, उस पे क्या कार्रवाई हो सकती है? और जो 33 सवाल पूछे जाते हैं उसमें कुछ ही मेरे से कुछ दो तीन ही सवाल पूछे गए थे, और मुझसे ये पूछा गया था कि आप टीवी देखते हो, तो मैंने उनसे मेरे को ये पूछ लिया था कि आप रेडियो सुनते हो, तो मैंने कहा रेडियो मैं पहला ऐसा शख्स कह रहे मिला है इसके बारे में भी।
1: तो इनका सवाल था कि रेडियो सुनते हैं कि नहीं, इस तरह के जो सवाल हैं वो पूछे गए थे।
0: जी, एक तो पहला मुझे लगता है इनका सवाल था गलत जानकारी के बारे में, तो पहले मैं बता दूं कि गलत जानकारी अगर कोई देता है तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है कि उसे कोई पनिशमेंट मिलती है। बट उससे ऊपर जो इम्पोर्टेंट बात है कि सेंसस की इन्फॉर्मेशन बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, सेंसस एक्ट में ये मेंशन है कि उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गोपनीय रखी जाएगी। तो जनरली लोग सही जानकारी देते हैं, और सेंसस एक्ट में ये भी प्रोविजन है कि लोग अपने बिलीफ से अपने नॉलेज से सही जानकारी दे। जो डेटा रिलीज होता है वो एक एग्रीगेट लेवल पे रिलीज होता है, तो आपकी इन्फॉर्मेशन, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लीक होने की कोई भी संभावना नहीं है। तीसरा जो है, जो हमारे 33 सवाल है वो नोटिफाई हो चुके हैं, गवर्नमेंट के गैजेट में नोटिफाई हो चुके हैं, तो उसमें जो भी सवाल है वो सारे उतने ही एनुमरेटर को पूछने हैं और उनका ही जवाब रिस्पोंडेंट को देना है। ये बिल्कुल सही कहा कि टीवी का सवाल उसमें है, रेडियो का सवाल उसमें है, रेडियो आप किस पे सुनते हैं ये भी उसमें पूछा गया है कि आप

0: मोबाइल पे सुनते हैं या आपके पास रेडियो सेट है या फिर आप कार में सुनते हो, उसी तरह टीवी का भी अलग अलग आप कैसे देखते हो, मतलब दूरदर्शन है आपके पास, फ्री डिश या डीटीएच है या फायर स्टिक है, केबल कनेक्शन है, तो अलग अलग सवाल उसमें है।
1: और अगर किसी भी तरह की हमारे श्रोता दिक्कत उठा रहे हैं तो आप मकान सूचीकरण और मकान गणना अनुसूची के लिए वेबसाइट जो पोर्टल दिया हुआ है sec.census.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं और आप सारे सवाल जो है वो इसमें आपको शो हो जाएंगे, किस तरीके के सवाल जो है जनगणना कर्मी पूछ रहे हैं, ताकि आपको आसानी होगी उस समय आपका सवालों का जवाब देने में। और रोशाली जी, एक और प्रश्न हमारे पास आया है कि क्या जनगणना में सभी के लिए शामिल होना आवश्यक है?
0: बिल्कुल, जैसे जनगणना का पहला ही जो मोटो है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं या किसी को दोबारा गिनती करेंगे नहीं, तो हर एक को इंक्लूड होना है जनगणना में। और जो बार बार मैं जिक्र कर रही हूँ, जनगणना अधिनियम की सेंसस एक्ट 1948, उसके हिसाब से हर एक व्यक्ति को या हर एक परिवार के मुखिया को ये कंपलसरी है कि सही सही जानकारी प्रगणक को दे। और ये प्रगणक की भी जिम्मेदारी है कि जितने सवाल गैजेट में पब्लिश हुए हैं उतने ही सवाल पूछे, उसके बिना और कोई भी सवाल ना पूछे, और जो भी इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट कर रहा है वो उसको गोपनीय रखे।
1: जी अच्छा, अगर कोई व्यक्ति मतलब जॉब की वजह से यहाँ पर रह रहा है, दिल्ली शहर में रह रहा है, लेकिन वो बिलोंग करता है किसी दूसरे राज्य से, तो वो क्या दोनों जगह का जो है उसके लिए भरना जरूरी होगा सेल्फ एनुमरेशन?
0: बिल्कुल नहीं, जैसे मैंने कहा सबको जैसे हम इंक्लूड करते हैं तो डुप्लीकेट भी नहीं करते हैं। तो जहाँ पे जनगणना की ये कंसेप्ट है, जो जहाँ पे नॉर्मली रिसाइड करता है, यानी जहाँ पे मैक्सिमम टाइम रहता है, अगर काम के सिलसिले में वो दिल्ली में रहता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन दिल्ली में कलेक्ट होगी, उसके अदर फैमिली मेंबर्स अगर गांव में रहते हैं तो अदर फैमिली मेंबर्स की गिनती गांव में होगी, लेकिन जो जहां पे रहता है वहीं पे उसका काउंटिंग होता है।
1: जी, और अब दिल्ली से ब्रह्मदत्त जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी ब्रह्मदत्त जी।
2: नमस्कार मैडम जी।
1: नमस्कार।
2: हमारे विषय विशेषज्ञ जी को प्रणाम।
0: नमस्ते। प्रणाम।
2: मेरे दो जिज्ञासाएं हैं। पहली है कि जो हमारे दस्तावेज हैं दूसरे शहर के बने हुए हैं, उत्तर प्रदेश राज्य के, और हम दिल्ली में निवास कर रहे हैं, तो क्या हम दिल्ली की जनगणना में सम्मिलित हो सकते हैं? प्रथम प्रश्न। दूसरी है मैडम ये है कि अगर हम घर पर नहीं मिलते हैं तो क्या जनगणना स्टाफ को हम अपने समय के हिसाब से बुला सकते हैं? भाई छुट्टी वाले दिन आ जाना आप, तो क्या ऐसा संभव है? एक अन्य प्रश्न है, जो लोग जनगणना में शामिल नहीं होना चाहते क्या उन लोगों के लिए कोई दंडात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है? धन्यवाद मैडम जी।
0: धन्यवाद ब्रह्मदत्त जी। तो तीनों सवाल आपके बड़े ही अच्छे थे। पहला तो ये है कि जनगणना में कोई भी दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे वो प्रगणक को नोट डाउन करनी है। इसीलिए हालांकि हम लोग सबसे अपील करते हैं कि जो इन्फॉर्मेशन सही है वही इन्फॉर्मेशन दे दे, और आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गोपनीय रहेगी, किसी के साथ वो साझा नहीं की जाएगी। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं बताती हूँ कि आरटीआई में भी हम इन्फॉर्मेशन देते नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कोई कोर्ट में अगर सबूत के तौर पर देने के लिए मांगता है तो उसको भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती एज पर सेंसस एक्ट। दूसरा जो सवाल था आपका, अगर आप घर पर नहीं मिलेंगे तो इसके लिए भी हमारे प्रगणक को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि अगर घर लॉक मिलता है तो दो या तीन बार वहां पे जाए, छुट्टी के दिन जाए या सुबह जल्दी जाए या शाम को देर से जाए, ताकि घर पे कोई ना कोई मिलेगा। तीसरा जो आपका सवाल था दंडात्मक कार्रवाई का, तो सेंसस एक्ट में ये प्रोविजन है सेक्शन 11 में कि अगर कोई गलत जानकारी देता है तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है।
1: तो यानी कि पूरा सहयोग आपको जनगणना कर्मी के साथ करना है और सही सही और सटीक जानकारी उन तक उपलब्ध करवानी है। और अब त्रिपुरा से अविनाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अविनाश जी।
3: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
3: जी, मैं नॉर्थ ईस्ट त्रिपुरा से अविनाश जी बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल है कि जब जनगणना टाइम पे सरकारी कर्मचारी हमारे घर पे आते हैं तो हम अपना जानकारी उनको प्रदान करेंगे, तो लेकिन हम उनको पहचानेंगे कैसे कि वो सही व्यक्ति आए हैं मेरे घर पे? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठगी व्यक्ति भी आ सकते हैं हमारे डाटा कलेक्ट करने के लिए, तो हम उनको पहचानेंगे कैसे?
0: जी धन्यवाद अविनाश जी। और उसको पहचानेंगे कैसे, तो उनके पास आई कार्ड होगा और अपॉइंटमेंट लेटर होगा, जो कि लोकल चार्ज ऑफिसर, हमारे जो चार्ज ऑफिसर होते हैं वो तहसीलदार या मामलतदार होता है आपके एरिया का, या कोई बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। तो ये इनका स्टैम्प और सिग्नेचर के साथ प्रगनक के पास एक आई कार्ड होगा, अपॉइंटमेंट लेटर होगा, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके ऊपर क्यूआर कोड होगा, क्यूआर कोड स्कैन करके आप देख सकते हैं, उसमें आपको हमारी वेबसाइट से सारे डिटेल मिल जाएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कोई फ्रॉड हो रहा है तो आप अपने चार्ज ऑफिसर से या एरिया के कोई भी ऑफिसर से उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं।
1: रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास आया है कि खाली मकान, बंद मकान या फिर निर्माणाधीन मकान की गिनती किस श्रेणी में होगी और इन्हें कैसे चिन्हित किया जाता है?
0: जी, तो हमारे जो मैंने कहा हर एक क्वेश्चन के अलग अलग कोड है, तो जो हमारा जनगणना मकान के कोड है उसमें कुछ कोड है वैकेंट के लिए, कुछ कोड है अंडर कंस्ट्रक्शन के लिए, कोड तो नहीं है बट अगर अंडर कंस्ट्रक्शन कोई बिल्डिंग है उसका छत डाला हुआ है तो उसको हम मानते हैं, क्योंकि मेन जो हमारा है सेकंड फेज जो फरवरी 2027 में होगा, तो हो सकता है अभी जो घर आपका अंडर कंस्ट्रक्शन हो फरवरी 27 तक वहां पे कोई रहने के लिए आ जाए, तो ऐसे इसीलिए उसको हम गिनती अभी कर लेते हैं, उसको नंबर देते हैं और उसको इन्फॉर्मेशन एज अ वैकेंट कर देते हैं और एक रिमार्क डाल देते हैं कि इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन, और जो खाली है उसको एक वैकेंट हम मानते ही है। कुछ ऐसे घर भी मिलते हैं कि घर लिया हुआ है लेकिन लॉक है, रहते कहीं और है, तो उसको भी लॉक के कैटेगरी में हम इंक्लूड करते हैं ताकि सेकंड फेज में वो छूटे नहीं।
1: जी, अच्छा, इसमें जनगणना मकान नंबर कौन देता है और दीवार पर लिखने का क्या नियम है?
0: ये प्रगणक देता है और नियम है कि एक प्रगणक को एक जो एरिया देते हैं एनुमरेशन ब्लॉक हम जिसको कहते हैं, छोटा सा एरिया होता है 700 से 800 पॉपुलेशन या 150 घरों का, तो वो पूरे अपने एरिया में सीरियली जनगणना मकान नंबर देता है, एक से लेकर जो भी लास्ट उसके एरिया में होगा तो वो खुद लिखता है। उसके लिए हमने कुछ स्टेशनरी उसको प्रोवाइड की है, मार्कर पेन्स वगैरह दिए।
1: ठीक है, और अब शिमला से हमारे साथ राकेश जी जुड़ गए हैं। जी राकेश जी।
4: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
4: जी, मेरा प्रश्न ये है कि जो घर में रहते तो उनकी तो होती है, जो किराए के मकान पे रहते हैं क्या वो भी जनगणना में आता है? उनको क्या जनगणना करवानी पड़ती है जो किराए पे रहते हैं?
0: जी बिल्कुल, जैसे फिर से मैं कह रही हूँ कि जनगणना में किसी को छोड़ा नहीं जाता, किसी को दोबारा गिना नहीं जाता, तो अगर आप किराए के भी घर में रह रहे हैं तो जनगणना का पहला जो रूल है कि जो जहाँ पे रहता है वहाँ पे उसकी गिनती होती है, तो आपका घर खुद का हो, किराए का हो या और किसी का हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ पे रह रहे वहीं पे आपकी गिनती होगी। आपका घर किराए का है या खुद का है ये जानने के लिए हमारा क्वेश्चन है कि घर आपका खुद का है या किराए का है। किराए का है तो उसके लिए भी आपका कोड है कि आपका घर किराए का है, लेकिन आपका खुद का घर कहीं और है तो उससे हमारे पास ये एक नंबर्स आ जाएंगे कि कितने मतलब पूरे कंट्री में या पूरे देश में कितने लोगों के पास खुद के घर है या कितने लोग किराए पे रह रहे हैं।
1: और अब रवि जी जुड़ गए हैं हमारे साथ हरिद्वार से। जी रवि जी।
5: हाँ जी नमस्कार मैम जी, मेरा ज्वालिया गढ़ मीरपुर हरिद्वार से हूँ जी।
1: जी नमस्कार।
5: हाँ जी माँ जी, विशेषज्ञ को भी मेरा नमस्कार जी।
0: नमस्ते
5: जी मैम, मैं जानना चाहता हूँ जी जो जनगणना है हमें सहयोग करेंगे, अपनी जानकारी देंगे, वो कितनी गोपनीय रखी जाएगी मैम?
0: जी बिल्कुल, ये पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, और कितनी रखी जाएगी इसके लिए मैं एक ही जवाब दे सकती हूँ कि आप भी मांगेंगे बाद में तो आपको भी नहीं दी जाएगी, इतनी गोपनीय रखी जाएगी, क्योंकि पूरी जानकारी एज पर सेंसस एक्ट या सेंसस अधिनियम जो है उसके हिसाब से किसी को दी नहीं जाती, आरटीए में भी दी नहीं जाती, कोर्ट में भी दी नहीं जाती और इंडिविजुअल भी को भी दी नहीं जाती। एक बार फिल होने के बाद वो कॉन्फिडेंशियल रह जाती है और हम सिर्फ एग्रीगेट लेवल पे डेटा रिलीज करते हैं।
1: और अभी कॉल इसने हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से महेंद्र जी। जी महेंद्र जी।
6: जी नमस्कार।
1: नमस्कार
6: मैम, मेरा सवाल ये है कि अगर पुत्र या पुत्र वधु अगर माता पिता के साथ जीवन यापन करते और उनका भोजन एक ही रसोई में तैयार होता है तो वो अलग परिवार माना जाएगा या उसी में जॉइंट किया जाएगा?
0: जी देखिए, जनगणना के लिए एक ही कंसेप्ट है, अगर एक परिवार मानने के लिए कि वो एक ही चूल्हे पे खाना पकाते हैं या नहीं, या एक ही किचन में खाना पकाते हैं या नहीं, तो इसमें कोई भी हो अगर वो एक ही किचन से खाना खा रहे हो, खाना पका रहे हो, तो उसको एक ही परिवार माना जाएगा। चाहे वो अनरिलेटेड हो, उनका कोई आपस में रिलेशन भी ना हो। जैसे आजकल हम देखते हैं तीन चार दोस्त मिलके एक छोटा सा फ्लैट लेके रहते हैं और अपना अपना खाना बनाते हैं या मेड को रख के खाना बनाते हैं, तो ऐसे में भी उनको हम एक ही परिवार मानते हैं।
1: अच्छा, इसी से जुड़ा एक और प्रश्न मेरे पास आया था कि अगर मेरी बेटी की शादी हो गई

0: वो किराए पर रहती है, तो क्या वो अपने घर में उसको सदस्य के रूप में शामिल कर सकते हैं?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं, वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे उसका उसको गिना जाएगा।
0: अच्छा, और अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी।
2: जी नमस्ते मैम।
0: जी नमस्कार।
2: आमंत्रित विशेषज्ञ महोदय आपको नमस्कार।
1: जी नमस्ते।
2: मेरा सवाल ये है मैम कि जो स्वगणना का जो भूमिका है, जैसे व्यक्ति अगर स्वगणना की आपने जिक्र किया था अभी, तो उस स्वगणना में उसकी कैसी भूमिका को सत्यापन के रूप में जाना जाएगा, उसको मतलब कौन सा ऐसा प्रमुख बिंदु रहेगा जो उसके व्यक्ति के प्रमुख कार्यों को बताकर वह किस तरह से स्वीकारा जाए, उसका सत्यापन करने के क्या तरीके हैं, यही मैं पूछना चाहता था। धन्यवाद जी।
1: जी, तो जैसे मैंने कहा, स्वगणना इस बार पहली बार हम लोग ये फैसिलिटी दे रहे हैं। 2011 तक ये फैसिलिटी नहीं थी। ये इस बार इसलिए इंट्रोड्यूस की कि काफी लिटरेसी भी बढ़ी है, प्लस आजकल बड़े बड़े शहरों में ये देखा जाता है कि घर के सारे सदस्य कहीं ना कहीं काम पे जाते हैं, सुबह से लेकर रात तक वो बाहर आते हैं रहते हैं, तो प्रगणक को देने के लिए उतना टाइम उनके पास नहीं होता। लेकिन उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन भरेगा वो सत्यापित करने भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कुछ हमारे कंसेप्ट्स है, जैसे पानी कहाँ से मिलता है या घर में टॉयलेट की फैसिलिटी क्या है, इस तरह के क्वेश्चन हो सकता है कभी कभी रिस्पोंडेंट को खुद पता ना चले, क्योंकि प्रगणक को काफी अच्छे से हम ट्रेन करते हैं। 3-4 दिन का उसका ट्रेनिंग होता है, उसको वीडियोज दिए जाते हैं, ट्रेनिंग मटेरियल दिया जाता है, तो इस तरह के इन्फॉर्मेशन अगर कभी रिस्पोंडेंट या जो खुद भर रहा है स्वगणना की इन्फॉर्मेशन कुछ गलत अगर करे, तो वो प्रगणक एक बार देख के उसको बता के उसको सही करके सत्यापित कर सकता है।
0: अच्छा, एक और प्रश्न हमारे पास आया है रुशाली जी की, स्लम और जेजे क्लस्टर बेघर आबादी की गिनती मकान जनगणना में कैसे सुनिश्चित की जाती है?
1: जी, स्लम के एरिया के लिए तो हम जैसे मैंने कहा, एक प्रगणक के लिए छोटा सा एक एरिया होता है, तो स्लम के हम अलग से एरिया बनाते हैं, उसको अलग से कोडिंग करते हैं ताकि हमारे पास स्लम का डेटा भी आ जाए, क्योंकि उनके घर होते हैं, कच्चे हो चाहे पक्के हो घर होते हैं, उसकी गणना की जाती है, घर नंबर भी दिया जाता है।
0: जी।
1: जो बेघर होते हैं, बेघरों की गणना पहले फेज में नहीं होती, उनको सेकंड फेज में गिना जाता है, जो कि सेकंड फेज हमारा कंप्लीट होने के बाद लास्ट डेट में जो 28 फरवरी का दिन होता है उसको रात को हम उनकी गणना करते हैं, क्योंकि जनरली ये लोग रात को ही मिलते हैं अपने किसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे या किसी ब्रिज के नीचे या इस तरह के जगह पे, तो बेघरों को सिर्फ सेकंड फेज में गिना जाता है।
0: जी, तो श्रोताओं, अब आपके सवाल जो है वो कुछ कम हो रहे हैं, तो हम आपका इंतजार कर रहे हैं कॉल का। आप परिचर्चा सुन रहे हैं और मकान सूचीकरण आवास गणना पर विषय आज हमने रखा है, क्योंकि जनगणना 2027 जारी है और बहुत तेजी से ये काम चल रहा है। जनगणना कर्मी जो है दिन भर लगे हुए हैं, आपके सवाल का जवाब जो है आप दे रहे हैं, और इसी पर आप कॉल कर सकते हैं 0112331-0481 पर, और प्रश्न पूछ सकते हैं हमारे विशेषज्ञ से। किसी भी तरह का डाउट अगर आपके मन में है और आप इससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, तो आप कॉल कर सकते हैं 0112371-7117 पर। हम कर रहे हैं आपके कॉल का इंतजार। त्रुशाली जी, एक और प्रश्न मेरे पास है कि भाषाई और क्षेत्रीय विविधता वाले राज्यों में प्रश्नावली को समझाने की सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है?
1: सबसे बड़ी चुनौती तो है उनको अपनी भाषा में समझाना, उनको अपनी भाषा में सारा मटेरियल उपलब्ध कराना, और प्रश्न भी उनके भाषा में होने चाहिए। तो ये बहुत अच्छा एक ट्रेडिशन है जनगणना का, कि जनगणना के सारे मटेरियल 16 भाषाओं में उपलब्ध है, जो सारे हमारे मोबाइल ऐप है या पोर्टल है या स्वगणना का वेब पोर्टल है, ये भी 16 भाषा में उपलब्ध है। जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स है ये तो 19 भाषा में उपलब्ध है, क्योंकि हर एक स्टेट की या हर एक रीजन की अपनी अपनी एक लैंग्वेज होती है, तो उन सारे लैंग्वेज में ये सारा अवेलेबल है।
0: जी, अच्छा, 2011 में जो है अगर बात की जाए तो डेटा की एंट्रिंग, स्कैनिंग और वेरिफिकेशन में लगभग बताया जा रहा है कि 2 साल लग गए थे, लेकिन 2026 में रियल टाइम डेटा अपलोड से रिजल्ट कितने जल्दी आने की उम्मीद है?
1: बहुत अच्छा सवाल है। जैसे 2011 में पहला हमारा पब्लिकेशन आने में 2 साल लगे, लेकिन आप देख सकते बहुत सारे क्वेश्चन पे हम इन्फॉर्मेशन लेते हैं जो सेकंड फेज में आती है, तो एक एक सीरीज या एक एक पैरामीटर पे डेटा रिलीज करने में 6 से 8 साल लगे थे। जो हमारा लास्ट टेबल रिलीज हुआ था माइग्रेशन पे, वो हमारा 2019 में रिलीज हुआ
0: जी
1: था। क्योंकि हमारे जो पेपर पे होता था, तो देश के हर कोने से पेपर कलेक्ट करना, मतलब इन्फॉर्मेशन भरने के बाद वो कलेक्ट करना, वो स्कैन करना, इसी में हमारे पूरे 2 साल निकल जाते थे। अब हालांकि हमारा डिजिटल हो रहा है, रियल टाइम डेटा आ रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट पहला जो हमारा पब्लिकेशन है वो 8 से 9 महीने में रिलीज हो जाए,
0: जी
1: और बाकी सारी डेटा 2 से 3 साल के अंदर अंदर डेटा पब्लिश हो जाए।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि जनगणना केवल जनसंख्या की गिनती नहीं है बल्कि राष्ट्र निर्माण की आधारशिला भी है। तो मुझे लगता है कि इसमें अगर सब लोग मिलकर भागीदार बनेंगे तो देश प्रगति की राह पर बढ़ेगा। और अब दिल्ली से विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी विकास जी।
2: हाँ जी, हमारे 2 मकान, एक तो गांव में है राजस्थान में और एक दिल्ली में है, तो हमारी जनगणना कहाँ होगी?
1: जहाँ पे आप रहते हैं हमेशा के लिए या ज्यादा वक्त जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे आपकी जनगणना होगी। और यहाँ पे बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि अगर आपकी जनगणना यहाँ पे होगी तो गांव के मकान का क्या होगा। जनगणना का उससे कोई भी संबंध नहीं है, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपकी गणना होगी।
0: हाँ विशाल, ये प्रश्न वैसे देखा जाए तो बहुत लोग पूछ रहे हैं, क्योंकि अक्सर लोग जो है रोजगार के लिए बाहर आते हैं और गांव का जो घर है उनका या तो खाली पड़ा होता है, लेकिन वो होता है, वो कहीं ना कहीं जाकर जो है उनसे जुड़ा हुआ होता है। तो वो लोग ये
1: बिल्कुल
0: सोच रहे हैं कि अगर यहाँ पर हम लोग वो भर देते हैं, जैसे दिल्ली में अगर रह रहे हैं तो दिल्ली का अगर भर जाता है तो क्या गाँव का भरना जरूरी होगा, और अगर छूट जाता है तो क्या होगा?
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो जनरली जनगणना की यही कंसेप्ट है कि जो आदमी जहां पे रहता है, क्योंकि देखिए अगर वो शहर में रहता है तो शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक मतलब शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें
0: जी
1: मजबूत बनाना है, इसलिए जनगणना का जो कंसेप्ट है, जो जहां पे रहता है वहां पे उसकी गिनती होगी। हालांकि मैंने फिर एक बार कहती हूँ कि इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन से इसका कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपका गांव में भी घर है, गांव में 2 घर है, यहाँ पे 1 घर है, तो इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ेगा। आप जहां पे रहते वहां पे आपकी गिनती होगी।
0: जी और अब एक और प्रश्न हमारे साथ जुड़ गए हैं। एमपी से राजेश नीमा जी ने प्रश्न ले रहे हैं उनका। जी राजेश जी।
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ, और मेरा सवाल ये है कि यदि एक घर में एक मकान, आधा मकान कच्चा है और एक कमरा पक्का है, तो वो जनगणना की कौन सी श्रेणी में आएगा?
1: जी तो जनगणना में अगर सारे सवालों के बारे में एक जिस्ट में बताऊं तो प्रीडोमिनेंटली यानी मुख्यतः जो यूज होता है उसका इंफॉर्मेशन हम लेते हैं। जैसे कि ड्रिंकिंग वाटर सोर्स की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कुआं भी है और नल से भी पानी आ रहा है, लेकिन आप नल का पानी ज्यादा यूज करते हैं तो नल आपको लिखना है। उसी तरह आपका अगर आधा मकान कच्चा है आधा पक्का है, या ज्यादा मकान पक्का है और थोड़ा सा मकान कच्चा है तो पक्का लिखना है। तो ये डिपेंड है आपका कितना पोर्शन पक्का है कितना पोर्शन कच्चा है।
0: और अब एक और लिस्नर हमारे साथ जुड़ गए हैं मथुरा से, पप्पू सिंह जी। जी पप्पू जी।
4: नमस्कार मैम।
0: नमस्कार
4: सर। जैसे मकान के अलावा जैसे हमारा प्लॉट है और उसमें हमारे पशु बनते हैं और ईंधन कंडा रखे रहता है और वहाँ पे कुछ भी बना नहीं है, वैसे ही है, उसमें पेड़ वगैरह खड़े हैं, तो उसकी गणना भी होगी क्या?
1: जी नहीं, जैसे हमारे इस फेज का नाम है मकान सूचीकरण, तो वहां पे कोई स्ट्रक्चर होना चाहिए, खाली प्लॉट को गिनते नहीं है। लेकिन वहां पे अगर कोई कच्चा सा शेड भी है जिसमें पशु रखे हुए हैं तो उसको एक नंबर दिया जाएगा और उसको नॉन रेसिडेंशियल करके उसको गिना जाएगा।
0: तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रश्न था एक तरीके से, क्योंकि अक्सर लोग गांव में जो होता है पशु वगैरह बांध देते हैं और पूरा एक शेड प्रॉपर ताकि बारिश से उनको बचाया जा सके वो रखते हैं। अच्छा रुशाली जी, एक और ये सवाल है कि 2011 में बैंकिंग सेवा का उपयोग नहीं पूछा गया था, लेकिन इस बार जो है जनधन डीबीटी के बाद इसे जोड़ने का क्या मकसद है?
1: मकसद यही है, क्योंकि एक स्कीम शुरू की गवर्नमेंट ने जनधन योजना, तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितने लोगों के पास या कितने परिवारों के पास बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है, ये देखने के लिए ये प्रश्न नए से जोड़ा गया है।
0: जी और अंत में चलते चलते हम रुशाली जी आपसे चाहेंगे कि जनता से क्या अपील हम करना चाहेंगे ताकि वो इसमें सहयोग दे सकें पूरी तरीके से।
1: जी जनता से यही अपील करना चाहेंगे कि पूरा कोऑपरेट करे इस जनगणना के लिए, क्योंकि जनगणना से जो भी आंकड़े आते हैं, फिर से एक बार दोहराती हूँ मैं, पूरी तरह से गोपनीय रखे जाते हैं। इससे कोई भी आपके ऊपर ना कोई टैक्स लगेगा, लेकिन जो भी आंकड़े आप सही

0: आंकड़े देंगे उससे सरकार की नीतियां बनेगी, पॉलिसीज बनेगी, जैसे किस गांव में स्कूल बनाने हैं या किस गांव में पानी की सुविधा देनी है, अच्छे पानी देनी है या टॉयलेट कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो इस तरह की जो भी वेलफेयर स्कीम्स सरकार बनाती है उसके लिए सही सही जानकारी देना बिल्कुल जरूरी है। तो यही एक अपील है कि सही जानकारी दे और कोऑपरेट करे और जो प्रगणक है हमारे वो अपना काम संभाल के पूरा एक्स्ट्रा काम ये कर रहे हैं, तो उनको अच्छे से कोऑपरेट तो करे ही, प्लस अच्छे से उनसे उनके साथ बिहेव करे, अच्छे से बात करे।
1: जी बिल्कुल वैशाली जी, क्योंकि 10 साल में एक बार ये मौका आता है कि जब आपके घर की गिनती, आपके सपनों की गिनती जो है वो की जाती है। जनगणना कोई डर की बात नहीं है, ये आपके हक की बात है और आपका मकान न गिना जाएगा तभी मकान तक सुविधा पहुंचेगी। भारत की पहली डिजिटल जनगणना में भागीदार बनिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली जी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आज आप हमारे समक्ष मौजूद रहीं और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का आपने जवाब दिया।
0: धन्यवाद,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो श्रोताओं मुझे दीजिए इजाजत कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है। आज ओस्लो में प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यह साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन, समुद्री अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देगी। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया।
1: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था, लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी। उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया। आज जब मैं नॉर्वे आया हूँ तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
0: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए। विशेष रूप से उच्च तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके।
1: रिसर्च, एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं। आज हमने सस्टेनेबिलिटी, ओशन एनर्जी, जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई। इंजीनियरिंग, एआई, साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे।
0: द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्र में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। नॉर्वे के प्रधानमंत्री ने आज एक महत्वपूर्ण बयान में संघर्षों से घिरे विश्व में सहयोग बढ़ाने के महत्व पर जोर दिया।
1: भारत और नॉर्वे दोनों रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डायलॉग और डिप्लोमेसी में विश्वास रखते हैं। हम एकमत है कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट से किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं निकल सकता, यूक्रेन हो या पश्चिमी एशिया। हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के हर प्रयास का समर्थन करते हैं। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म अनिवार्य है।
0: प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम द्वारा रॉयल नॉर्वेजम ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि स्वीडन की उनकी यात्रा के कई महत्वपूर्ण परिणाम निकले हैं जो द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान करेंगे। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने में ये एक महत्वपूर्ण पहल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में कल इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मिलेंगे। श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से

भी बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बाद भी इस वर्ष निर्यात $863 दर्ज किया गया। सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वादों के अनुरूप संस्थागत भ्रष्टाचार और महिलाओं के साथ अत्याचारों की जांच के लिए 2 जांच आयोगों का गठन किया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आज इस निर्णय की घोषणा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने आज अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर से नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पिछले 24 घंटे में सीबीआई ने 5 जगहों पर तलाशी अभियान में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, लैपटॉप और मोबाइल फोन जब्त किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: industry collaboration in India's nuclear sector. The delegation includes senior representatives from the U.S. nuclear industry, business stakeholders, and officials associated with India-U.S. cooperation in civil nuclear energy and advanced technologies. Referring to India's long-term clean energy goals under the vision of Viksit Bharat 2047, Dr. Singh said, India claims to increase its nuclear power capacity from the present 8.8 gigawatt to 100 gigawatt by 2047. The West Bengal government has constituted two inquiry commissions to probe the alleged institutional corruption and atrocities against women in line with the election promises made by the Bharatiya Janata Party. Chief Minister Shubhendu Adhikari announced the decision today after the proposal was approved by the state cabinet. In IPL cricket, chasing a target of 181, Sunrisers Hyderabad were 38 for 1 in 5 overs against hosts Chennai Super Kings when reports last came in. Put into bat first, Chennai Super Kings posted 180 for 7 in 20 overs with Kartik Sharma's 44 runs highest score. For Hyderabad, Pat Cummins picked up 3 wickets. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं वैष्णवी मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ ऊर्जा और समुद्री अर्थव्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया सरकार ने इबोला के प्रकोप के मद्देनजर हवाई और समुद्री बंदरगाहों पर निगरानी और तैयारी के उपाय लागू किए और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नॉर्वे की पहली यात्रा के दौरान दोनों देशों ने भारत नॉर्वे संबंधों को पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी में उन्नत करने की घोषणा की है आज ओस्लो में प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ये साझेदारी स्वच्छ ऊर्जा से लेकर जलवायु लचीलापन नीली अर्थव्यवस्था से लेकर हरित शिपिंग तक के क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देगी उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत की क्षमता गति और प्रतिभा का उपयोग करते हुए नॉर्वे की प्रौद्योगिकी और पूंजी के सहयोग से भारतीय कंपनियां वैश्विक समाधान विकसित करेंगी प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने के लिए नॉर्वे का आभार व्यक्त किया
2: मैं पिछले वर्ष नॉर्वे आने वाला था लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के कारण वह यात्रा स्थगित करनी पड़ी उस कठिन समय में नॉर्वे ने आतंकवाद के विरुद्ध भारत के साथ मजबूती से खड़े होकर सच्ची मित्रता का परिचय दिया आज जब मैं नॉर्वे आया हूं तो मैं इस सॉलिडेरिटी के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं
1: हाल ही में लागू व्यापार और आर्थिक साझेदारी से परिणाम सुनिश्चित करने के लिए आज ठोस कदम उठाए गए विशेष रूप से उच्च तकनीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टार्टअप के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना की गई ताकि साझेदारी को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके
2: रिसर्च एजुकेशन और इनोवेशन भी हमारे संबंधों के मजबूत पिलर्स बने हैं आज हमने सस्टेनेबिलिटी ओशन एनर्जी जियोलॉजी और हेल्थ जैसे क्षेत्रों में रिसर्च कोऑपरेशन बढ़ाने पर सहमति बनाई इंजीनियरिंग एआई साइबर और डिजिटल जैसे सेक्टर में हम अपनी यूनिवर्सिटी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को जोड़कर अपने पार्टनरशिप को फ्यूचर रेडी बनाएंगे
1: इस द्विपक्षीय बैठक में उच्च तकनीक, स्वास्थ्य समाधान, डिजिटल स्वास्थ्य और डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के क्षेत्रों में कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। भारत के इसरो और नॉर्वे की अंतरिक्ष एजेंसी के बीच समझौता ज्ञापन अंतरिक्ष क्षेत्र में संबंधों को और मजबूत करेगा। आज एक त्रिकोणीय सहयोग और समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत भारत और नॉर्वे संयुक्त रूप से भारत के डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का उपयोग

0: के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मैटरेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए व्यापारिक प्रमुखों से भी बातचीत करेंगे।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 और 20 तारीख को इटली में होंगे। यह दौरा 5 देशों की यात्रा का अंतिम चरण है, जिसका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। एक उच्च स्तरीय अमरीकी उद्योग प्रतिनिधि मंडल ने आज भारत में परमाणु क्षेत्र में निजी निवेश और उद्योग सहयोग के उभरते अवसरों के बारे में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल के इस दौर में अमरीकी परमाणु उद्योग के वरिष्ठ प्रतिनिधि, व्यावसायिक हितधारक और नागरिक परमाणु ऊर्जा तथा उन्नत प्रौद्योगिकियों में भारत अमरीका सहयोग से जुड़े अधिकारी शामिल थे। इस अवसर पर डॉ. सिंह ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच आज विज्ञान, प्रौद्योगिकी, स्वच्छ ऊर्जा और उभरते क्षेत्रों में मजबूत और भविष्योन्मुखी साझेदारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वियतनाम की राजधानी हनोई पहुंचे। वे आज से 2 देशों, वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि इस दौरान सामरिक सहयोग बढ़ाने, रक्षा औद्योगिक साझेदारी मजबूत करने, समुद्री सहयोग सुदृढ़ करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अधिक ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: वियतनाम की यात्रा के दौरान श्री राजनाथ सिंह वहां के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ आपसी बातचीत करेंगे। दक्षिण कोरिया में श्री राजनाथ सिंह वहां के रक्षा मंत्री अहन क्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। श्री सिंह दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे और आपसी संबंधों को मजबूत बनाने की नई संभावनाएं तलाश करेंगे। वे क्षेत्रीय और वैश्विक मामलों में साझा हितों पर भी विचार विमर्श करेंगे। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: सरकार ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किए जाने के बाद वह कांगो और युगांडा में इबोला वायरस के हालिया प्रकोप पर कड़ी निगरानी रख रही है। सूत्रों ने बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति की समीक्षा की है और एहतियाती सार्वजनिक स्वास्थ्य उपाय शुरू किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली सतर्क है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियन ने अमेरिका के साथ बातचीत करने के अपने निर्णय को उचित ठहराया है और कहा है कि कूटनीति में गरिमा जरूरी है, लेकिन ईरान अपने राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करना जारी रखेगा। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरेनियम के भंडारों, प्रतिबंधों में राहत और पश्चिम एशिया में महीनों से जारी संघर्ष के लिए क्षतिपूर्ति को लेकर बातचीत में गतिरोध रहते हुए ईरान को नई चेतावनी जारी की है। ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य में परिचालन की निगरानी और प्रबंधन के लिए एक नए नियामक निकाय की स्थापना की घोषणा की है। ये कदम महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन गलियारे से संबंधित गतिविधियों की निगरानी और समन्वय के लिए जिम्मेदार एक समर्पित प्राधिकरण के औपचारिक गठन को दर्शाता है। इस बीच सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद भारत में कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अपर सचिव मुकेश मंगल ने बताया कि मार्शल द्वीप समूह के ध्वज वाला LPG वाहक पोत SYMI लगभग 19,965 मीट्रिक टन LPG लेकर शनिवार रात गुजरात के कांडला स्थित दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण पर पहुंचा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नॉर्वे के प्रधानमंत्री योनस गौर स्टोर से ओस्लो में वार्ता की। द्विपक्षीय संबंधों को स्वच्छ

0: ऊर्जा और समुद्री व्यवस्था पर केंद्रित करते हुए पर्यावरण अनुकूल रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर सहमति। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने अमरीकी उद्योग प्रतिनिधिमंडल के साथ परमाणु ऊर्जा सहयोग और भारत में निजी निवेश के अवसरों पर वार्ता की। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अभिनीत शुक्ला विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds talks with his Norwegian counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo. Agreed to elevate bilateral ties to a green strategic partnership focusing on clean energy and blue economy. Prime Minister Modi awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by King Harald V. Government rolls out surveillance and preparedness measures at air and seaports amid Ebola outbreak. And Union Minister Jitendra Singh holds talks with U.S. industry delegation on nuclear energy and private investment opportunities in India. Prime Minister Narendra Modi's first ever visit to Norway has seen a substantial outcome, with both the countries declaring the upgradation of India-Norway relation to green strategic partnership. In a joint statement today, after delegation-level talks with counterpart Jonas Gahr Støre in Oslo, Prime Minister Modi highlighted that this partnership will ensure increased collaboration in sectors ranging from clean energy to climate resilience, blue economy to green shipping.
2: आज हम भारत नॉर्वे संबंधों को एक ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप दे रहे हैं। इस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से क्लीन एनर्जी से लेकर क्लाइमेट रेजिलियंस, ब्लू इकोनॉमी, उससे लेकर के ग्रीन शिपिंग, हर क्षेत्र में भारत की स्केल, स्पीड और टैलेंट को नॉर्वे की टेक्नोलॉजी और कैपिटल के साथ जोड़कर हमारी कंपनीज ग्लोबल सॉल्यूशंस डेवलप करेगी।
1: Prime Minister Modi said the India-EFTA Trade and Economic Partnership Agreement serves as a blueprint for shared progress and prosperity.
2: भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। पिछले वर्ष भारत और यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के एक ऐतिहासिक ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। यह एग्रीमेंट भारत और नॉर्वे के बीच शेयर्ड प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी सुनिश्चित करने का ब्लूप्रिंट है। इस एग्रीमेंट में अगले 15 वर्ष में भारत में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: Both the leaders reiterated their common belief in rules-based world order and commitment to dialogue and diplomacy. Prime Minister Modi thanked Norway for standing firmly with India against terrorism during that difficult period and described it as a reflection of true friendship. Multiple MOUs were signed in this bilateral meeting in the sectors of high-tech health solutions, digital health, digital public infrastructure. An MOU between India's ISRO and Norway Space Agency will ensure deepening of ties in the space sector. A triangular cooperation agreement signed today. In this, India and Norway will jointly provide human development solutions to the countries of Global South using India's digital public infrastructure. The Norwegian Prime Minister, in a significant statement today, underlined the importance of increased cooperation in a world mired with conflicts. He recognized India's leadership in the technological sector. In a gesture towards closer relations, Prime Minister Modi was awarded Grand Cross of the Royal Norwegian Order of Merit by His Majesty King Harald V of Norway. Mr. Modi reached Norway this afternoon after concluding his visit to Sweden. The Prime Minister said in a social media post that his visit to Sweden was marked by several important outcomes that will add new momentum to bilateral relations. He said the discussions were highly productive, from elevating bilateral ties to a strategic partnership, launching of Joint Innovation Partnership 2.0 and the India-Sweden Technology and Artificial Intelligence Corridor. Prime Minister Modi addressed the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. The event witnessed participation of business leaders from both the countries.